मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

कार्यक्रम वंदना में अब आपको सुनवाते हैं ए हरिहरन और साथियों के स्वरों में शिव भजन।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। डीजे सुनिए विदुषी वीणा सहस्रबुद्धे के स्वर में ये भक्ति रचना।

कर्म वंदना का समापन कर रहे हैं। छाया गांगुली के स्वर में प्रस्तुत इस भक्ति गीत से

0: छाया गांगुली के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन में श्री बसंत निर्गुणे के विचार। वाचक स्वर है डॉक्टर अरविंद सोनी का।
1: कृति में आ शब्द लगने से कृति का अर्थ बदल जाता है। कृति का अर्थ रचना होता है। ये कार्य उपसर्ग का होता है जो शब्द से पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को विशेष अर्थ में स्थित कर देता है। यहां कृति में आ लगकर आकृति हुआ है जिसका अर्थ किसी पदार्थ या प्राणी का आकार प्रकार हो जाता है। कोई भी व्याकरणविद आकृति शब्द की यही सामासिकता बता सकता है, पर मुझे आकृति शब्द बहुत आकर्षित करता है। आकृति में किसी की मूर्ति बसी होती है। ये सृष्टि ईश्वर की कृति है, इससे बड़ी कोई आकृति भी नहीं हो सकती। इस आकृति में सब कुछ समाया है, सूक्ष्म से लगाकर विराट तक, लघु से लगाकर विशाल तक, तिल से लगाकर पहाड़ तक। ये सब आकृतियां अलग अलग अस्तित्व रखती हैं। आकृति के बिना यह संसार अधूरा है। जहां देखो वहां हमें आकृति दिखाई देती है। सारा संसार आकृतियों से परिपूर्ण है। आकृति के बिना कोई पदार्थ अथवा प्राणी स्थिर नहीं रह सकता। हर पदार्थ की अपनी आकृति है। आकृति को हम बनावट कह सकते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों पेड़ पौधों को जरा ध्यान से देखिए। विश्व में कितनी ही आकृतियों का मेला लगा है। किसी भी कृति को हम आकृति से ही पहचानते हैं। आकृति गढ़ने का काम प्रकृति करती है। प्रकृति को हमने ईश्वर माना है। प्रकृति और ईश्वर दोनों बराबर हैं। गहराई से देखें तो प्रकृति और ईश्वर की कोई आकृति नहीं है। दोनों निराकार हैं, फिर भी वे आकृति गढ़ते हैं। प्रकृति को आकृति गढ़ने की मूल शक्ति मिली है। इसके कारण अमूर्त प्रकृति मूर्त होती है। प्रकृति अपनी ही मूर्ति बार बार गढ़ती है। इसमें उसकी सर्जन और विसर्जन की मूल प्रवृत्ति है। प्रकृति का नियम है, वो फिर फिर अपना रूप या आकृति ग्रहण करती है। इस रूप परिवर्तन में प्रकृति अपना नया आकार ले लेती है, लेकिन उसका मूल आकार कभी नहीं बदलता। एक बीज जिस पेड़ को बनाता है, वो बीज उसी पेड़ को हर समय में गढ़ता है। न उसका आकार बदलता और न उसकी प्रकृति। एक आम का बीज हमेशा आम्र वृक्ष ही पैदा करेगा। प्रकृति का यह दृढ़ नियम है, इसे ऋत कहते हैं। एक बीज में पूरे पौधे या पेड़ का आकार समाया हुआ होता है। हम प्राणी भी इस नियम से बंधे हुए हैं। प्रकृति के इसी गुण की हम पूजा करते हैं। जो क्षण वर्तमान है वो एक पल बाद अतीत में चला जाता है, और जो आने वाला पल है वो वर्तमान में बदल जाता है। वर्तमान ही नित्य होता है। सांसों के साथ काल की गणना की जाती है। जो सांस हम ले रहे हैं वो वर्तमान है, जो सांस चली जाती है वो अतीत बन जाती है। आने वाली सांस भविष्य की सांस होती है। पता नहीं अगली सांस आए या ना आए, ये काल की कृति है। इस कृति की कोई आकृति नहीं होती, फिर भी काल अदृश्यमान होकर निरंतर हमारे साथ है, सांस के साथ है। काल की यही नियति है। असली आकृतियां हमारे मन में बनती हैं, जिन्हें छवि भी कह सकते हैं, जिन्हें बिंब भी कह सकते हैं। मन की छवियां अनंत हैं, जिनकी आकृतियां बनती मिटती हैं। मन की ये छवियां या आकृतियां शब्द का रूप ले लेती हैं, तो कोई कविता बन जाती है, कोई कथा का रूप धारण कर लेती है, यहां तक कोई चित्रकार हो जाती है, तो कोई स्वराकार में बदल जाती है। यह अमूर्त से मूर्त की ओर जाने की यात्रा है, कृति से आकृति बनने की यात्रा है। मनुष्य एक कृति है। इस कृति में से वो अपनी एक आकृति गढ़ता है जो उसकी पहचान होती है। इस पहचान या आकृति को बचाने की कोशिश मनुष्य दिन रात करता है। कभी वो इंसान बनता है, कभी वो शैतान बन जाता है, तो कभी वह भगवान भी बनकर दिखा देता है। मनुष्य की आकृति का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या बनेगा। पर प्रकृति की आकृति कभी नहीं बदलेगी। जिस दिन प्रकृति बदलेगी उस दिन आदमी की आकृति क्या होगी, सोचने समझने की जरूरत है।
0: अभी श्रोता सुन रहे थे चिंतन में आकृति विषय पर श्री बसंत निर्गुणे के विचार। वाचक स्वर था डॉक्टर अरविंद सोनी का। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव, साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, बरसात के मौसम में पौध रोपण। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फलदार पौधों की पौध रोपण करें। पौध रोपण के लिए बरसात का मौसम अधिक उपयुक्त रहता है। इस मौसम में रोपे गए पौधे कम हो जाते हैं। भूमि के अनुसार पौध रोपण के लिए पौधों का चयन करना चाहिए। जहां पर ढलान वाली भूमि हो, वहां पर ढलान के विपरीत दिशा में ऐसे पौधों का रोपण करें जिनके फल नवंबर दिसंबर तक तोड़ाई युग्य तैयार हो जाते हों। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां नीचे गिर जाती हों, जैसे आंवला, सीताफल, करौंदा, इमली, बेर। फल वृक्षों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में बान की पौधे, यूकेलिप्टस, सुबबूल, बांस, महुआ का भी रोपण कर सकते हैं। पौध रोपण के लिए उचित दूरी पर गड्ढे खोदने के साथ साथ सीढ़ीनुमा नालियां भी बना देनी चाहिए, जिससे पौधों के पास अधिक समय तक पानी थलई में एकत्रित न हो। पानी के बहाव का वेग कम होगा, मिट्टी क्षरण भी रुकेगा। यदि मिट्टी की गहराई पर्याप्त है, पानी अधिक समय तक रुकता हो, वहां पर आम, कटहल, अमरूद का रोपण करें और बाद में उन्हें कलमी पौधों में परिवर्तित करें। पौध रोपण सही समय पर करें, जिससे बारिश का अधिक से अधिक लाभ पौधों को मिल सके। पौधों की बढ़वार के अनुसार पौधों की दूरी निर्धारित की जाती है, जैसे आम, कटहल, महुआ, आंवला। ये पौधे बड़े आकार के होते हैं और इनकी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इसी प्रकार कम आकार के बढ़ने वाले पौधे नींबू वर्गी, अमरूद, सीताफल, इनकी दूरी 6 मीटर रखी जाती है। यदि निर्धारित दूरी से पौध कम दूरी पर रोपण करेंगे तो डालियां आपस में मिल जाएंगी और इन्हें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलेगा। फलस्वरूप बगीचे के किनारे के पौधों को छोड़कर शेष पौधों में फलन न की बराबर होगी। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न मिल पाने के कारण फल अधिक झड़ेंगे, कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक होगा।

0: इसलिए पौधरोपण निर्धारित दूरी पर ही करनी चाहिए। पौधरोपण के बाद गड्ढों की भराई के लिए अच्छी पकी गोबर की खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में, साथ ही कोई भी कीटनाशक चूर्ण, फेनवाल, फलीडाल या नीमयुक्त दवा मिलाकर अवश्य गड्ढों की भराई करें, जिससे पौधों में दीमक लगने की संभावना न रहे। पौधरोपण के लिए क्यारियों में एक या दो बार बदला हुआ पौधा ही होना चाहिए। ऐसे पौधों में फाइब्रस रूट्स, जिन्हें झकड़ा जड़ कहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है और ये जल्दी ही भूमि से पोषक तत्व अवशोषित करने लगते हैं, जिससे जड़ों का जमाव शीघ्र होता है। जलग्रहण क्षेत्रों में बीजू पौधा ही लगाएं, बाद में उन्नत किस्म के पौधों में परिवर्तित करें। बीजू पौधों में टैप रूट पाई जाती हैं, जो काफ़ी गहराई तक जाकर भूमि में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जिससे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। वर्षा का मौसम समाप्त होने के बाद पौधों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पौधों के बीच में उगे खरपतवारों को निकालते रहें, जिससे पौधों में कीट और बीमारियों से बचत होगी। साथ ही खरपतवार भूमि से पोषक तत्व भी अवशोषित करते हैं, जिससे मुख्य पौधे कमजोर हो जाते हैं। पौधरोपण के 4-5 वर्ष तक पौधों के बीच में अधिकांश भूमि खाली रहती है। ऐसी भूमि में अंतर्वर्ती फसलें सब्जी के रूप में उगाकर आय का स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा। बरसात के मौसम में पौधरोपण जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
4: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो, और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिख कर भेजाता थे, और हमारी पसंद को लोकगीत हमारी जीजी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
5: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोकगीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
4: काय ऐसो का होगा जीजी?
5: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
4: जीजी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
5: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
4: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
5: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो, 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से,
4: 9425702768।
5: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
4: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

0: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47.5 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे, विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति। श्रीशाहः ह्यः राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53.4 crore rupees विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 14.5 वर्षात् 26.5 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासाम विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रति सप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्गमीटर परिमिते प्रांगणे 22 check-in स्थानकानि, 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि, 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां संभूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य 9 दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य 10 दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अम्सारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर। यानी 1386 किलो हर्ट्स पर। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे अमित उपमन्यु के कविता पाठ का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 7:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी रुचि शिवहरे। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे इनके गाए कुछ गीत और भजन। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे सुजल जैन। आप सुनेंगे राग ललित में शास्त्रीय गायन। प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:30। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे 10:05 पर। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक श्रोता सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। दिन के 11 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अपराह्न 1 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे दोपहर 2 बजे और 2:30 पर चित्रपट संगीत का।

शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5:33 पर और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 6:00।

प्रादेशिक समाचार दर्शन श्रोता सुनेंगे शाम 6:45 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। चर्चा होगी नागपंचमी और स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया। साथ ही श्रोता सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। रात 8:00 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 पर फिल्म संगीत। 9:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और रात 10:00 फिल्म संगीत। कार्यक्रम राग रजनी सुनिएगा रात 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, भोपाल को खेलों की राजधानी बनाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कल दी गई श्रद्धांजलि। इंदौर में प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, भोपाल में हुआ प्रतिमा का अनावरण। नाग पंचमी पर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले। और जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बीते कुछ सालों से भोपाल में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार भोपाल को खेलों की राजधानी बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कल राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप राष्ट्रीय रैंकिंग के तीसरे संस्करण के समापन पर चैंपियनशिप की विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल की टीम ने 20 मेडल हासिल कर पहला स्थान, नेवी यूथ स्पोर्ट्स कंपनी गोवा की टीम ने दूसरा स्थान और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब सिकंदराबाद की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी कार्य पद्धति से आमजन में स्वीकार्यता प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी पद दे सकती है, पदाधिकारी बना सकती है, जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, लेकिन नेता हमेशा जनता बनाती है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी की प्रेरणा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा इंदौर के दशहरा मैदान में लगाई जाएगी। कल उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से यह प्रतिमा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग 4 महीनों में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आधारशिला समारोह में कहा कि प्रतिमा न केवल एक स्मारक होगी बल्कि अटल जी के विचारों और को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी।
1: केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ और पार्वती कालीसिंह चंबल ये पूरी योजना से राजस्थान। जब मैं यहाँ अटल जी के नाम पर इस पथ का लोकार्पण कर रहे हैं तो एक और 4 नंबर विधानसभा का 7 करोड़ की लागत से फूटी कोठी चौराहे से संत श्री सेवालाल ब्रिज का भी सर्विस रोड का भूमि

0: भोजन हुआ।
1: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य का विषय उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए। वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले मंदिर में पट खुलने के बाद लगातार 24 घंटे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के साथ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद उन्होंने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, यानी पानी की मुख्य टंकी से लेकर नल तक पानी के पूरे आपूर्ति के दौरान उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। पानी के पुराने और जर्जर भंडारण टैंकों को तेजी से बदलकर नए टैंक लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने जल स्रोतों और आउटलेट बिंदुओं पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं, अभिभावकों और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही युवा नशा मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल कल लोकभवन में पुलिस, नगर सेवा और नागरिक सुरक्षा के पदक प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने प्रदेश पुलिस के उन सभी कर्मवीरों का अभिनंदन किया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और विशिष्ट सेवाओं से मध्य प्रदेश पुलिस और प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल है। भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में भी 18 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेगी। आयुष शेट्टी का सामना विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन चीन के शियू कोई से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में श्रावण मास के तृतीय सोमवार के अवसर पर आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली जाएगी। दमोह जिले में कल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर नोटहा से लेकर दमोह तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिंडौरी जिले के बिलगांव बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए आज सुबह 8 बजे दो गेट खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह कल आज से 2 दिवसीय आगरमालवा जिले के भ्रमण पर रहेंगे। शिवपुरी में युवा संगम कार्यक्रम 20 अगस्त को शासकीय LSG के महाविद्यालय पोहरी में आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के

आरसी स्थित शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवा नगर ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश स्तर पर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। भिंड जिले में 30 एमपी बटालियन एनसीसी और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से सीएटीसी कैंप में सह प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव साथी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए अमित उपमन्यु से कविता पाठ।
1: पहली कविता का शीर्षक है नई राह। कभी हवा से भी हल्का लगता है प्रेम, रंग बन सवार होता है तितली पर, चुन लिया जाता है गुलाब से शहद की तरह, बनता है बाग के फूलों में और इत्र सा महकता है सांसों में हम दोनों की। कभी समंदर से भी भारी होता है, तले में बैठता चला जाता है, सूरज सा जलता है फलक पर, धरती को भी जलाता है, रेत सा खटकता है आँखों में हम दोनों की। ऐसे ही एक भारी दिन व्यथित हो मैं अपना थैला उठाता हूँ और तुमसे दूर चला जाता हूँ। जीवन में शांति खोजता मैं एक पेड़ के नीचे पहुँचता हूँ, एक सेब मेरे सर पर गिरता है और मुझे न्यूटन याद आता है। वक्त के साथ जोड़ और मजबूत न हो तो प्रेम शाख से टूट जाता है। जीवन में संतुलन खोजता मैं समंदर किनारे पहुंचता हूं, वहां आर्किमिडीज को बैठा पाता हूं, वह मुझे अपनी खोज सुनाता है। जब प्रेम के ऊपर लगाया जाने वाला बल उसके नीचे की सतह से भारी हो जाता है, प्रेम अतल गहराई में हमेशा के लिए खो जाता है। जीवन में आदर्श खोजता मैं आगे बढ़ता हूँ, रास्ते किनारे बॉयल, चार्ल्स और गे लुसाक अपनी अपनी खोज सुना रहे हैं और आदर्श गैस की खूबियाँ बता रहे हैं। मैं चाव से सुनता जाता हूँ। अंत में वे सामूहिक घोषणा करते हैं, असली जिंदगी में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती। मैं भौचक्का रह जाता हूँ। पीछे के जंगल से डार्विन की आवाज़ गूंजती है, बदलो या नष्ट हो जाओ। मैं गहरी सोच में पड़ जाता हूँ। पुराना थैला बाहर ही छोड़ मैं नई राह से घर लौट आता हूँ। सत्य के दांत नहीं होते, सत्य कभी मरता नहीं, विलंबित हो जाता है भीष्म की काल चयनित मृत्यु की तरह, अबूझ हो जाता है मकड़ी के जाले की तरह, धुंधला जाता है किसी मोतियाबिंदी आँख की तरह, पर मरता नहीं, बस एक अधमरे सांप की तरह रेंग कर किसी ओट में छुप जाता है, फिर से बाहर आने को एक भौंडे वक्त पर, अनचाही आंखों के सामने किसी पुराने प्रेम पत्र की तरह। सत्य कभी मरता नहीं, अन्यायी उसे दौड़ा सकते हैं थका नहीं, कोड़े दे सकते हैं जख्म नहीं, रुसवाई दे सकते हैं फांसी नहीं, क्योंकि सत्य के पैर नहीं होते, पीठ नहीं होती, गला भी नहीं। सत्य की ओट में स्वर्ण मृग के छलावे, अश्वत्थामा हतह की अति मंद ध्वनियाँ और विकास के मानचित्रों की अट्टालिकाएँ छुपी हो सकती हैं। कभी इसे सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है उस अभागन स्त्री सा जिसे भोगते सब हैं, स्वीकार कोई नहीं करता। जब इसका गर्वोन्मत्त गरल वमन किया जाता है और नहीं होता कोई महावीर नीलकंठ इसे स्वीकार करने, तो वो भटकता है कुछ क्षण के लिए धरा पर और फिर ऊपर उठने लगता है। सत्य बहुत हल्का होता है, उसके हृदय में पाप नहीं होता। वो उठते उठते पृथ्वी की सीमा से बाहर जा ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है विश्वात्मा। जब अंतरिक्ष यात्री जाएंगे ब्रह्मांड में तो वह उन्हें गूंजता सुनाई देगा वहां, शब्दशः वैसा ही जैसा ठुकराया गया था, बिना वायु भी, क्योंकि सत्य के फेफड़े नहीं होते। आश्चर्य है सत्य क्यों काटने दौड़ता है सबको, बावजूद इसके कि सत्य के दांत नहीं होते। प्रश्नों के अर्थ पर, तुम अपना अर्थ बूंद बूंद गिराना धरती पर, धारा तो खाली कर देती क्षण भर। मेरा आधा अर्थ है मिट्टी में, आधा किसी बादल के अंदर, वो बरसेगा सावन भादों और फूटेगा फूल पत्ती अंगूर सेब अनार में, रंग महक रस शिल्प में, और लेगा नया अर्थ रक्त बन कहीं कहीं, तय करेगा सागर की दूरी जहां और भी अर्थ आते होंगे, और फिर वे सब मिल रचेंगे एक नया अर्थ। पर प्रश्न रहते हैं शाश्वत, रहेंगे शाश्वत, बस बदलते रहेंगे उत्तर। हाथ से डोर छूटते ही गुब्बारे चल देते हैं अपनी यात्रा पर अनंत की ओर। मैं देखता रहता हूं उनको बढ़ता हुआ मेरी विस्मृति की ओर। कुछ शब्द समंदर में बहाई गई बोतल बंद पहचानों की तरह धीरे धीरे जबानों से दूर चले जाते हैं। आखिरी बचे कुछ सौ लोगों के साथ एक भाषा चुपचाप बैठी घूरती रहती है अपनी कुछ सौ कदम दूर खड़ी मौत को। टीबी की डूबती खांसी, कैंसर के बुझते चेहरे भी किसी क्रॉसवर्ड पहेली की तरह बस एक तारीख की ओर इशारा करते हैं। पर कई लोग बस यूं ही कहीं चले जाते हैं एकदम, और फिर खंजर की तरह कलेजे में बार बार उतरते हैं उनकी नेम प्लेट के कोने, उनके फ़ोन नंबर के सारे विषम अंक और फोटो में उनकी खिलखिलाती आंखें। जो बच्चे निकले थे सुबह स्कूल या खेल के मैदान के लिए, अगर वे लौटते नहीं गोधूली तक भी, उसके बाद भी नहीं, कभी भी नहीं, तो उन घरों में क्षितिज पर ही टंगा रहता है सूरज हमेशा के लिए, एक पवित्र सवालिया निशान की तरह। टूटते सितारों से भरी आकाश गंगा के एक ध्रुव तारे को सहेजे रहती हैं दो पनीली आंखें। गति के नियम, इस कविता का एक भाग है यह। साथ चलने का नुकसान है तुम मुझे अब मुड़कर नहीं देख सकती, तुम्हारी नर्म हथेलियों की नमी में भींज जाता हूं, हाथों की रेखाएं जुड़कर ठहरी झील की सतह पर कमसिन लहरों सी मुस्कुराती हैं। पीछे मुड़कर ढूंढती थी तो आंखों में फिक्र का तूफान होता था जैसे कुछ खो गया हो तुम्हारा। मुड़कर देखती और हमारी नजरें मिल जाती तो एक मुस्कुराहट होती थी होठों पर मामूली सी, जैसे फिर से पा लिया तुमने मुझे और यह बात मुझ तक न पहुंचे। खोना और पाना मसला नहीं है दरअसल, मुड़ना अधूरेपन का एहसास था एक दूजे बिन। वह एहसास जरूरी है हथेलियों को नर्म और मुलायम रखने के लिए। कभी रह जाना पीछे भी बुरा नहीं, साथ चलने का हुनर कायम रखने के लिए। धूप का धर्म, ओस की बूंद सी झर जाती है रात सुबह की घास पर,

चिड़ियों में चहचहाने लगता है भोर का पवित्र रंग, रात की सारी खुशबुएं घुल जाती हैं सिरहाने पड़े बालों में, बिस्तर छोड़ देते हैं उनींदे सपने मेरी आँख खुलने से पहले, सलवटों में उलझा छोड़ देते हैं प्रेम। खिड़की में बैठी रात रानी पहनकर आती है धूप की एक लकीर, चूमती है मेरे पैरों को अपनी गर्म सांसों से कुछ पल, फिर मुस्कुराती समा जाती है वापस सलवटों में। होठों पर जमी पपड़ियाँ ओस का दस्तखत हैं प्रेम के संविधान पर, रात रानी की देह पर इठला रहा है नदियों का संगीत। मैं महसूस करता हूँ फिजा में लौटती खुशबुएं और अपनी बाहों में लौटती धूप का धर्म।

अभी श्रोता सुन रहे थे अमित उपमन्यु से कविता पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी श्रोता सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म एक नज़र का ये गीत। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत से सवार था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जुर्माना से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में फिल्म फरार का ये गीत। बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी सुबह के 8 बजे तक आप सुन सकते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में। गीतकार थे बजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
5: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
4: क्या, कैसे?
5: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
4: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
5: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं वर्मा मलिक के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर की गायक फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज।
1: पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएँ कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर

0: तरमिदी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17 या 23-71-7106 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
4: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
5: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आज़ादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची

0: of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir, and BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर से भी। इस समय प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं रुचि शिवहरे। आप सुनेंगे इनके गाए कुछ गीत और भजन। सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में ये भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार रुचि शिवहर के गाए कुछ गीत और भजन। तबला संगत है महेश विशोपिया की, सारंगी संगत उस्ताद अब्दुल मजीद खां की। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कलाकार रुचि शिरहरे के गाए कुछ गीत भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम की कलाकार थी रुचि शिवहरे। आज आपने सुने इनके गाए कुछ गीत और भजन। तबला संगत थी महेश विशोपिया की। सारंगी पर थे उस्ताद अब्दुल मजीद खां। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं, अभिभावकों और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही युवा नशा मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल ने कल लोकभवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा इंदौर के दशहरा मैदान में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल आधारशिला समारोह में कहा कि ये प्रतिमा अटल जी के विचारों और मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी कार्य पद्धति से आमजन में स्वीकार्यता प्राप्त की थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए। वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले मंदिर में पट खुलने के बाद लगातार 24 घंटे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भोपाल में आयोजित राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में नेशनल सेलिंग स्कूल की टीम ने 20 मेडल हासिल कर पहला स्थान, नेवी यूथ स्पोर्ट्स कंपनी गोवा की टीम ने दूसरा और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
1: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, नया दिन नई सुबह है और हम आपके सामने मुखातिब हैं कार्यक्रम का या नया अंक लेकर। श्रोता मित्रों, इस समय प्रकृति बिल्कुल धुली हुई साफ साफ नजर आ रही है। धरती की हरी भरी गोद में जहां कल कल बहते झरने हों, नदियां हों जो जीवन का संगीत सुना रही हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों में गीत गा रही हैं। श्रोता साथियों, प्रकृति हमारी

सबसे पहली और सच्ची शिक्षक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के सबको जीवन देना और संवारना है। प्रकृति की सुंदरता और उसके संगीत को यही दिखाना है। बारिश की पड़ती हुई बूंदें, जिनसे सब कुछ ऐसा लगता है निखर गया हो, धुल गया हो।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
7: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा भारतीय स्थानीय सुगम संगीत प्रतियोगिता माधव संगीत महाविद्यालय में आगामी 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। इस प्रतियोगिता में 2 आयु वर्ग होंगे, जिनमें जूनियर वर्ग में 8 से 15 वर्ष और सीनियर वर्ग में 16 से 25 वर्ष तक के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के लिए प्रथम पुरस्कार ₹10,000, द्वितीय पुरस्कार ₹5,000 और तृतीय पुरस्कार ₹3,000 निर्धारित किया गया है। तो इच्छुक लोग इसलिए आवेदन कर सकते हैं। श्रोता साथियों, आत्मनिर्भर होना हम सभी का एक सपना होता है, या यूं कहें हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन शहर की महिलाओं को रोज़गार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत शहर में जल्दी ही 10 निर्भया कैफ़े शुरू किए जाएंगे। खास बात यह होगी कि इन कैफे का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। कैफे का संचालन जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्मार्ट सिटी की देखरेख में किया जाएगा। कंपनी 20 वर्ष तक इन निर्भया कैफे की जिम्मेदारी संभालेगी। ऐसी महिलाओं को कंपनी रोजगार देगी जो जरूरतमंद होंगी। एक निर्भया कैफे पर 5 से 6 महिलाएं काम करेंगी। महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन द्वारा भेजी जाने वाली जरूरत महिलाओं को इसमें रखा जाएगा। सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलने वाले इन कैफे में 3-3 महिलाएं 2 शिफ्ट में काम करेंगी। महिलाओं को भुगतान कंपनी के द्वारा ही दिया जाएगा। कैफे ऐसे स्थान पर खोले जाने की योजना है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा भी रहे, इसे ध्यान में रखकर ही स्थल का चयन किया जा रहा है। अभी तक हमारे शहर में बैजाताल, 1000 बिस्तर अस्पताल और महाराजबाड़ा टाउन हॉल के पास मुरादजार अस्पताल आदि जगह पर स्थान का चयन किया जा रहा है। श्रोता साथियों, इस कैफे का उद्देश्य सिर्फ खान पान की सुविधा देना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद और हुनरमंद महिलाओं को रोज़गार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कैफे की शेफ, कैशियर, मैनेजर से लेकर हाउसकीपिंग तक की पूरी टीम महिलाओं की होगी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता साथियों, नशा निवारण अभियान हमारे सरकार का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज को मादक पदार्थों की लत से बचाना, लोगों को जागरूक करना और पीड़ितों का उपचार और पुनर्वास करना है। इस आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में नशे के बुरे प्रभावों के बारे में बताना है। ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और नशा पीड़ितों की पहचान कर उन्हें परामर्श और इलाज की सुविधा प्रदान करना इस अभियान का मुख्य रूप से उद्देश्य है। विश्वविद्यालयों और स्कूलों के पाठ्यक्रम में नशा विरोधी संदेशों को शामिल किया जाना चाहिए। रैलियां, योग सत्र, खेलकूद और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। सहायता के लिए पुनर्वास केंद्रों और विशेष हेल्पलाइन नंबरों का संचालन भी किया जा सकता है। हमारा युवा देश का भविष्य है। युवाओं और नागरिकों को नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना, समाज में इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। समाज में नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति के चक्र को कमजोर करना भी इस अभियान का एक उद्देश्य है। इस मुहिम को एक जन आंदोलन बनाना, जिसमें शिक्षण संस्थाओं, युवाओं और सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। लोगों और विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के प्रति जागरूक किया जाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। श्रोता साथियों, आज जरूरत है कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि समाज का हर वर्ग आगे आए, तभी इस बुराई को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। श्रोता साथियों, आज साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अमृतलाल नागर की जन्म जयंती है। बीसवीं सदी के सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय हिंदी साहित्यकार अमृतलाल नागर, उन्हें मुख्य रूप से उनके उपन्यासों और कथा साहित्य के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अमृतलाल नारर का जन्म 1916 में आगरा में आज ही के दिन हुआ था। किशोरावस्था में ही वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भाग लिया और वानर सेना में सक्रिय रहे। पुलिस की लाठीचार्ज में घायल होने के बाद उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी जो 1928 में प्रकाशित हुई। उनको मानस का हंस और खंजन नयन जैसे कालजयी उपन्यासों के लिए जाना जाता है। बूंद और समुद्र एवं अमृत और विश्व उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उन्हें हिंदी के अलावा अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। 23 फरवरी 1990 को उनका निधन हो गया। आज भी उनकी कृतियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती हैं कि साहित्य की विधा में हर रूप में समाज का प्रतिबिंब होता है।

और श्रोता मित्रों, समय भी कह रहा है कि अब हम आपसे विदा लें। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को यहीं विराम देने की अरुणा को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय सुबह के 9:30:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं सुजल जैन। आप सुनेंगे राग ललित में शास्त्रीय गायन। तबला संगत है विकास विपट की।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भोपाल से अनुप्रसाद जिले की चिट्ठी।
1: पुलिस परेड मैदान पर आयोजित किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज ध्रुवे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम के सामूहिक गायन ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली भी निकाली गई और फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश के वाचन को एलईडी के माध्यम से देखा और सुना गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत 14 अगस्त को सचिव श्रम विभाग रघुराज राजेंद्रन और कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवड़े ने बैतूल विकासखंड की ग्राम पंचायत खेडला में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्राहियों के आवास अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। खिडला में ढूंढा तक सड़क नहीं होने से बारिश के दौरान आवागमन में ग्रामीणों को होने वाली परेशानी पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने 12 अगस्त को आठनेर जनपद के ग्राम बोरपानी में 65 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि बोरपानी में 65 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र से गांव के लोगों को छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बैतूल में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि देश भर में हर घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जिला प्रशासन बैतूल द्वारा फ्रीडम रन हम दौड़ेंगे देश के लिए का आयोजन किया गया। फ्रीडम रन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके ने 13 अगस्त को शासकीय एकलव्य महिला ITI में 10.68 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अंतर्गत शासकीय ITI में 60 सीटर बालक छात्रावास तथा एकलव्य महिला ITI में 6 ट्रेड के आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। रक्तांजलि एक रक्तदान राष्ट्र के नाम अभियान के तहत जिला स्तरीय मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वीर शहीदों की स्मृति में आयोजित इस शिविर में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवड़े और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने स्वयं रक्तदान कर नागरिकों को प्रेरित किया। शिविर में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, छात्र छात्राओं, युवाओं, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर में 400 यूनिट रक्तदान हुआ। जिले में खरीफ मौसम में फसल बीमा तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 17 अगस्त यानी आज तक कर दी गई है। कृषि उपसंचालक आरके रजक ने बताया कि मौसम की विपरीत परिस्थिति के चलते भारत सरकार ने फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त यानी आज तक की है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इस योजना से जुड़ सके। युवा संगम के तहत जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन 13 अगस्त को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके उपस्थित थे। जिला रोजगार अधिकारी श्याम कुमार ध्रुवे ने बताया कि रोजगार मेले में 269 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया। इस दौरान 10 निजी कंपनियों के द्वारा कुल 216 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म फर्स्ट लव लेटर से, गीत अनजान का है, धुन तैयार की है पप्पी लहरी ने। पसंद क्या है आप सभी श्रोता साथियों ने? नेहरू चौक पैठणी से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर महाराष्ट्र से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी चित्रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है ततरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमीन दीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म फर्स्ट लव लेटर का ये गीत।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नाचे मयूरी से आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। कोपरगांव महाराष्ट्र से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, शेगांव से श्रीमती गोंथली और उषा गोंथली। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाह है नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम ने। ग्राम पीपलोड़ सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूरन वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना देशमुख। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सोमन जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से इसी गीत को सुनना चाह है मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल ने। बबोरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल और गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। लीजिए आप सब सुनिए फिल्म नाचे मयूरी का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

0: आंखों में हजारों में
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म बीवी हो तो ऐसी का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में, बोल थे समीर के, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। बुलढाणा वड़शिंगे महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुबेद कुमार दामोदर। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और इसी गीत को सुनना चाहा है। नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा ने। रामनगर कोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू

0: 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: कार्यक्रम वर्षे फरमाइश में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सैनिक का गीत, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में। संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने, गीत समीर का है। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, जेल रोड मथुरा से सरफुरुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, ग्रामबाठिना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाह है परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, रेशमा और राजेश साहू ने। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, और कुंटलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राकेश, राजेश और ऋषिता। आप सब सुनिए फिल्म सैनिक का गीत, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में आप आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म सलामी का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीत मदन पाल का है, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। पसंद क्या है आप सभी श्रोता साथियों ने। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप राजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। फलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी और मायरा सुरोशी। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भरत और कमल साहनी। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है पंडरपुर शहर महाराष्ट्र से सुनीता शिंदे, यशराज प्रशांत, ऋषि और कृष्णा घोड़के और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमल अनेजा। लीजिए आप सब सुनिए फिल्म सलामी का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: सो योर प्लेस और माइन।
3: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
2: कॉन्डम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना का गीत, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। ग्राम पंजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, सार्थक आदर्श और अलौकिक चंसौलिया। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, गुरु महाराज और नीरेंद्र राजपूत। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता गौड़, राधा नामदेव, दिव्यांशु यादव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मकड़ और दर्शन भाई ने। आप सब सुनिए फिल्म दीवाना का गीत, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दामिनी का गीत, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में। पसंद किया है आप सबने। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा और दीक्षा और कुश मूरत। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और साथ में है वर्षा, सुमन, मेघा, राशि और अनुराग मोहन। आप सब सुनिए फिल्म दामिनी का ये गीत।

0: फिल्म दामिनी के इस गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।
1: संरक्षण पर्यावरण संतुलन और सभी जीवों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवा संवाद को संबोधित करते हुए कल कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव तरीके से युवाओं के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल और निगरानी प्रणाली स्थापित करने को कहा है। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर रीवा शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए पेश है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। सावन की रिमझिम फुहार और बरसात का मौसम, तो ऐसे में मन क्यों न हो प्रसन्न। और जब आप प्रसन्न होते हैं तो होठों पर मुस्कान तो यकायक आ ही जाती है। इसलिए हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, जब भी करो बात मुस्काया करो, जैसे भी रहो खिलखिलाया करो, जो भी हो दर्द सह जाया करो, ज्यादा हो दर्द तो अपनों से कह जाया करो।

0: जीवन एक नदी है, गिरते जाया करो, ऊंच नीच होगी राह में, बढ़ते जाया करो। अपनापन यहाँ महसूस हो तो चले आया करो, बहुत सुंदर है यह संसार, सुंदर और बनाया करो, इसलिए जब भी बात करो मुस्कुराया करो। तो चलिए, प्यारी सी मुस्कुराहट आपके होठों पर भी आ चुकी है और जुड़ते हैं कार्यक्रम में और खुश करते हैं हमारे उन श्रोताओं को जिनके आज हमने फोन कॉल आज के प्रोग्राम में शामिल किए हैं।
1: हेलो, मूवी का नाम है मैडम निगाहें, मूवी का गाना।
0: अच्छा, निगाहें का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये वाला गाना है मैडम। किसे ढूंढता है पागल सपेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, ऐसा करके सॉन्ग है।
0: अच्छा अच्छा, था ये गाना सुनने की कोई खास वजह?
1: मैडम ये गाना नाग पंचमी है ना, इसलिए गाना चाहिए था हमें।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद पर किया है वो गीत आपके रेडियो सेट पर। शुक्रिया संतोष जी, नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम आज है फोन करें गीत सुने। नीमत से कौन बात कर रहे हैं, एक बार फिर से अपना
1: गंगा
0: नाम।
1: मेहरा बात कर, नीमत से।
0: जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आप नेटवर्क में आकर बात कर।
1: जी मैम, क्या बादल वगैरह हो रहे हैं ना, इसे नेट नहीं मिल रहा है।
0: अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए, जल्दी से अपनी फरमाइश बता दीजिए, कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना
1: गाने
0: चाहते
1: के
0: हैं।
1: बोल, मूवी का नाम है जॉनी मेरा नाम, और गाने के बोल है बाबुल प्यारे।
0: जी, चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: नमस्कार, सागर मध्य प्रदेश से पंडित शिव नारायण तिवारी बोल रहे हैं।
1: जी सागर से बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। कौन सा गीत आपने सोच कर रखा है?
0: बारिश हो रही बहुत ज्यादा।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बारिश का ही कोई गीत सुनना चाहेंगे या अपनी पसंद बताइए बारिश के किसी गीत की।
0: पसंद है आज की ये चांदनी फिल्म का।
1: कौन सा गीत?
0: चांदनी आज सावन की फिर वो झड़ी है
1: जी, और खासकर सावन और बारिश है तो सोने पे सुहागा जैसा है ये गीत, है ना?
0: जी।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया।
0: आप बोल रही?
1: जी मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ। नमस्कार
0: जी, नमस्ते नमस्ते
1: नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: नमस्कार
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्कार।
0: जी,
1: हरदयाल जाटव, जिला क्षेत्री मध्य प्रदेश। सब
0: कैसे हैं हरदयाल जी?
1: बढ़िया है जी।
0: क्या चल रहा है अभी? बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है या नहीं
1: मौसम
0: आपके?
1: बढ़िया है, कल पानी बरस गया झूराझार, अभी तो धूप निकली है। हाँ
0: आह, क्या बात है। तब तो फिर आपने जो है, आपके घर की नमी और आसपास के वातावरण में थोड़ी सी खुशबू आ
1: हाँ
0: जाएगी
1: जी,
0: धूप से, है ना
1: हाँ जी।
0: जी? बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप हरदयाल जी?
1: अनाड़ी फिल्म का सुना दीजिए।
0: ठीक है, अनाड़ी फिल्म में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं दीवानी
0: बरसात के मौसम में अपना बेहतर ख्याल रखिए, क्योंकि
1: हाँ
0: धूप,
1: जी,
0: ठंड और हवा से मिलकर जो है स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। धन्यवाद हरदयाल जी, नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम में फोन करें कि सुने। नमस्कार।
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते, नीतू बोल रही हूँ,
0: कहाँ से?
1: उज्जैन से।
0: नमस्ते नीतू जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने
1: हाँ
0: पहली
1: मैम,
0: बार
1: मुझे
0: फोन लगाया नीतू जी?
1: हाँ मैम, मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है।
0: अच्छा, चलिए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और कितनी
1: जी
0: ट्राई के बाद आपका फोन लगा है?
1: जी थैंक यू मैम। आप
0: हम भी अच्छे हैं। कितनी बार आपने कोशिश की कि आज आपका फोन लगा और हमसे बात हुई है?
1: हाँ मैम, करती थी पर डे दो चार बार, दो चार बार, आज लग गया।
0: ठीक है, प्रयास करते हैं तो सफलता भी जरूर मिलती है
1: जी
0: ना,
1: मैम थैंक
0: चाहे
1: यू।
0: वो किसी भी
1: मुझे
0: क्षेत्र की हो।
1: हाँ, मुझे गाना सुना है, मूवी का नाम है अनजाने, और गाने के बोल हैं काले काले बादल जब भी छाएंगे।
0: क्या करती हैं
1: कौन
0: नीतू
1: बोल
0: जी
1: रही है
0: आप?
1: मैम आप?
0: जी, मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी जी ओके मैम, अच्छा लगा बात करके।
0: धन्यवाद। क्या करती हैं आप नीतू जी?

0: मैम मैं टीचर हूँ
1: हाँ, क्यों, कौन सा
0: जी,
1: विषय पढ़ाती हैं आप?
0: और हाउस वाइफ भी हूँ टीचर के साथ साथ
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी
0: इसलिए
1: बात है कि आप डबल ड्यूटी करती हैं, है
0: जी
1: ना?
0: मैम
1: और आपका प्रोफेशन भी इतना अच्छा है कि आप देखिए आप कितना बच्चों का भविष्य बनाते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। घर से तो मिलते ही हैं संस्कार, लेकिन
0: जी जी
1: स्कूल
0: मैम
1: जाने के बाद में भी जो शिक्षक उन्हें संस्कारित करते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, है ना?
0: जी जी मैम थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात
1: जी, कौन
0: करके।
1: सा विषय पढ़ाती है आपने ये तो बताया ही नहीं हमें।
0: मैम मैं UKG नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ।
1: तो आपके पास
0: जी
1: तो सभी विषयों की जिम्मेदारी होगी।
0: वैसे मेरा पसंदीदा तो हिंदी है और संस्कृत है।
1: बढ़िया, चलिए,
0: जी
1: तो आप अपनी इसी तरह की नेक
0: जी
1: गतिविधि में व्यस्त रहिए
0: जी
1: और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम।
0: जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए, फिर हम आपसे जानेंगे आपकी फरमाइश।
1: जी, मैं ग्राम उलझान से बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार।
0: कैसे हैं आप,
1: बढ़िया हूँ
0: बताइए आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में आप?
1: मैडम। ये फिल्म का नाम है प्यासा सावन,
0: हाँ, इसका कौन सा गीत?
1: गाना मेघा रे मेघा रे।
0: जी,
1: जी
0: अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर जो है हमें ऐसी ही फरमाइश मिल रही है और मज़ा भी आता है मौसम के अनुरूप
1: हाँ,
0: जब हम गीत
1: उसके
0: सुनते हैं।
1: आवाज
0: तो
1: जी,
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते मैम।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं तुम?
1: मैं रुचि जैन बोल रही हूँ रतलाम से। जी
0: कैसी हैं आप?
1: मैम, हम अच्छे हैं। और आप?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आप पढ़ाई करती हैं क्या?
1: जी हाँ, हम 9th क्लास में हैं।
0: जी, तो आपका पसंदीदा विषय कौन सा है रुचि जी?
1: मेरा तो बायोलॉजी।
0: बायोलॉजी है। ठीक है, तो आगे आपने क्या सोच के रखा है बायोलॉजी आपका पसंदीदा?
1: आगे हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे।
0: हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप अपनी जो
1: थैंक यू
0: आपका जो
1: मैम, आप
0: लक्ष्य
1: कौन
0: है।
1: बोल रही हैं?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: नाम है राबता।
0: हाँ, गीत के बोल बताएं।
1: राबता मूवी का सॉन्ग है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ये वाला।
0: अच्छा जी, तो आपको समय मिलता है? आपका स्कूल रहता होगा ना कल, अगर जब ये कार्यक्रम प्रसारित
1: सुन लेती
0: होगा।
1: हूँ कभी कभी, आज तो संडे ना।
0: हाँ, आज संडे है इसलिए फोन लग गया, लेकिन कल आप शायद ना सुन पाए क्योंकि आपका स्कूल रहेगा इस समय। तो
1: कोई बात नहीं, हम बाद में, मतलब ऐसा कुछ पापा से बोल देंगे, वो सुनवा देंगे।
0: अच्छा, तो पापा रिकॉर्डिंग करके रख लेंगे है ना, और फिर आपको सुनवा देंगे। चलिए, कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मेरी दो सिस्टर है
0: हाँ,
1: और एक भाई है, वो
0: अच्छा, दूसरी सिस्टर क्या करती है?
1: भी छोटे हैं।
0: छोटे हैं। चलिए ठीक है, तो आप सबसे बड़ी हैं, यानी आपके ऊपर दो भाई बहन की जिम्मेदारी है।
1: जी मैम,
0: हाँ, तो रक्षाबंधन के लिए क्या सोचा है आपने अपने भाई के लिए,
1: बस
0: जल्दी से
1: रक्षा
0: बताइए।

0: हेलो
1: मैम नमस्ते। फोन
0: नमस्ते।
1: करेंगी सुने?
0: बिल्कुल
1: ग्राम
0: सुनिए
1: नेगई सिलोड़ी तहसील ढींगरा जिला कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी, नाम भी तो बताइए
1: परमलाल साहू मैं।
0: जी। परमलाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप
1: बहुत अच्छे हैं मैम।
0: जी? और कौन सा गीत सुनना चाहेंगे अगर?
1: बंधन फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए मैम।
0: जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते
1: मैं सीमा बोल रही हूँ बीना से। हाँ,
0: जी। सीमा जी स्वागत है हमारा। नमस्ते, हम प्रियंका बात कर रहे हैं, आपकी रेडियो संगीनी आपकी सेवा में हाजिर है। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मुझे तो वो चाहिए याराना फिल्म का गाना।
0: कौन सा गाना सुनेंगे?
1: हाँ,
0: याराना का गीत मिल
1: तेरे
0: जाएगा?
1: जैसा यार कहाँ।
0: चलिए, याराना फिल्म का ये गीत। नमस्कार।
2: तेरे

श्रोताओ, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करे गीत सुने। आज हमारे बहुत से नए श्रोताओं से आज हमने बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम नए नए श्रोताओं से जुड़े ताकि हमें नई नई फरमाइश मिले और नए नए गाने सुनने का अवसर भी मिले। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर नए रिश्ते ना बने तो कोई मलाल न करना, पर पुराने टूट न जाए बस इतना ख्याल रखना। आज जिन श्रोताओं से हमारी बातचीत हुई है उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और अगले कार्यक्रम के तक के लिए अनुमति चाहती है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति प्रियंका माहेश्वरी की थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: रायसेन जिले के भोजपुर शिव मंदिर में सावन सोमवार और नाग पंचमी के सहयोग पर भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लखीसराय में भगदड़ से हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों, स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। देश की आज़ादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक पेश की। मौसम विभाग ने आज सीधी, मऊगंज, डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी। और FIH हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टल क्वीन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के वो गीत सुनाते हैं जो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म कभी कभी से, स्वर लता मंगेशकर किशोर कुमार के हैं, गीतकार साहिर, संगीतकार खयाम। फरमाइश हमें आई है मोहाली चंडीगढ़ से, श्रोता है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इन्हीं के साथ अगले श्रोता महाराष्ट्र उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस, एकांश। मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन, टुकटुक। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित और ध्वनि गवाड़कर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म मिशन कश्मीर से। गीत लिखा राहत इंदौरी ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटड़ा बहादुर ज़िला मंदसौर मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल, पप्पू लाल और विक्रम डांगी। इन्हीं के साथ अगले श्रोता गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म घर से। गीत में आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें लेवई से आई है। श्रोता हैं गुलाब दास माणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिगनी से दनीश वर्मा हैं, भिलाई से मुकेश वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा। अगले श्रोता ग्राम पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक और साथियों के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म छुपा रुस्तम से। गीतकार संगीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से। श्रोता हैं एमएम रजावत, मधु रजावत, राशि रक्षित, राज चित्रंजन, कमल उमेश, सरोज, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रीत, ऋषभ। अगले श्रोता छत्तीसगढ़ बालोफ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार तामुरिया, डॉली, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। बन वगैरह से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा। बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी सानवी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म एक दीवाना था से। गीत लिखा जावेद अख्तर और ब्लेज ने, संगीतकार है ए.आर. रहमान। फरमाइश रिंगनी छत्तीसगढ़ से आई है, दिनेश वर्मा करुणा वर्मा श्रोता हैं। अगले श्रोता डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। अगले श्रोता कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी, मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं, सीखो कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
5: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
0: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
1: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
0: हाँ भाई समझा।
1: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का सातवां भाग।

सन 1857 के शुरुआती महीनों में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की अंगड़ाई साकार हुई। विदेशी दास्ता के जुए को कांधों से उतार फेंकने के लिए देशवासियों की पहली कोशिश, मातृभूमि की बलवेदी पर पहला अनुष्ठान, जनगण का पहला अभियान, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम।

0: आमने सामने की लड़ाई में कंपनी की फौज को भारी नुकसान सहना पड़ रहा था, लेकिन वो संभल गई। दक्षिण से, बंबई और मद्रास से ताजा दम फौजें इकट्ठा की गईं, नए सेना नायक नियुक्त किए गए और स्वाधीनता संग्राम को कुचलने का नया दौर शुरू हुआ।
1: स्वाधीनता के सेनानियों में आग थी, उमंग थी, जोश था, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह था, लेकिन प्रतिरोध की कोई योजना या रणनीति उनके पास नहीं थी और इसलिए ये प्रतिरोध प्रतिशोध के उन्माद में सिमट कर रह गया।
2: विप्लवी दीवानों के पास कोई सेनानायक नहीं था और न ही कोई तालमेल। वो एक भीड़ की तरह आते थे और विनाश के पन्ने लिखकर इधर उधर छितरा जाते थे।
1: हैवलॉक, आउट्रम, नील आदि अंग्रेज सेनापतियों के नेतृत्व में फिरंगी फौजें पलटवार के लिए चल पड़ी। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एक के बाद एक पराभूत होते जा रहे थे।
2: जनरल विल्सन ने सितंबर में दिल्ली पर घेरा डाल दिया। अपने घुड़सवार टुकड़ी के साथ जनरल हडसन महल में घुस गया। बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर और मलिका जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया गया। हडसन ने खुद मुगल शहजादों को मौत के घाट उतार दिया।
1: जनवरी की 27 तारीख और वर्ष 1858, मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का दिल्ली के लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।
0: बहादुर शाह जफर को फांसी दिया जाना एक नई उत्तेजना और एक नए बवाल का सबब हो सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें आजीवन सजा देकर रंगून भेज दिया।

0: और मुगल बादशाहत हमेशा के लिए इतिहास से विदा हो गई। सन 1858 के प्रारंभिक महीनों में उत्तर भारत के विप्लवी दस्तों की बड़ी और संयुक्त रूप से की जाने वाली कार्रवाइयां थम गई थीं। विद्रोही तितर बितर होकर छोटे छोटे गिरोहों में बंट गए थे और छापामार शैली में हमले करके अंग्रेजों को खूब परेशान कर रहे थे।
1: हिमालय से लेकर बिहार और विंध्य पर्वतमाला तक और ग्वालियर दिल्ली से लेकर गोरखपुर दानापुर तक का समूचा भूभाग इन बिखरे हुए विप्लवियों से भरा हुआ था। वो पराजित अवश्य हुए, लेकिन ये पराजय अनिर्णीत थी। उनमें अभी भी उत्साह था। अंग्रेजों का कब्जा केवल शहरों तक था, अंचलों और जनपदों में विद्रोह अभी भी शेष और तपती गर्मी का मौसम अंग्रेजों के लिए प्रतिकूल।
0: संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र था कालपी, जहां नाना साहब की सेनाएं और रणबांकुरे सेनापति तात्या टोपे की मौजूदगी अंग्रेजों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रही थी। बुंदेलखंड और मध्य भारत नाना साहब, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई से लोहा लेने चल पड़ा था जनरल यूरोज़।

0: जनरल ह्यूरोज का फरमान आया है भाई साहब।
1: क्या चाहते हैं वो?
0: ह्यूरोज चाहता है कि झांसी समर्पण करते। आप अपने सरदारों के साथ बिना हथियार अंग्रेजों की छावनी में।
1: बस करो नाना साहब, ह्यूरोज अपनी कौम का दस्तूर ही निभा रहा है, झांसी की प्रजा इसका जवाब देगी।
2: हम लड़ेंगे और मर मिटेंगे
3: अपनी झांसी के लिए,
4: अपने रानी के लिए,
5: अपने देश के लिए,
6: स्वराज के लिए।
2: यही उत्तर भिजवा दीजिए रानी साहिबा, झांसी का संदेशा जनरल ह्यूरोज के नाम।
1: जनता की ये आवाज साम्राज्यवाद के बहरे कानों में पहुंच गई होगी।

0: अब तुम लोगों की शूरवीरी और हथियारों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। लड़ाई में मोर्चे को संभालना, बैरी की योजना को समझकर उसे विफल करना, हथियार और अनुशासन, लड़ाइयाँ इनसे ही जीती जाती हैं।
1: फाटकों की हिफाजत और सैनिकों की

0: के भीतर और बाहर मौजूद रहूंगी, नगर की गली गली में घूमूंगी और जनता को सचेत रखूंगी। हर एक फाटक की देखभाल करूंगी मैं। जी रानी साहिबा।
1: हर हर महादेव। हर हर महादेव।
2: वेल जनरल हीरोज, यहां से देखो मोर्चा साफ साफ दिखाई देता है।
3: Yes, Stuart, I can see which I have never seen before. हाँ स्टुअर्ट, मैं देख रहा हूँ पहले जो कभी नहीं देखा और शायद फिर कभी देखूंगा भी नहीं। हम औरतों से लड़ रहे हैं, मर्दाने लिबास में औरतें ही औरतें, लेकिन हम उनको पहचान सकते हैं। वो टोपे चला रही हैं, टोपे में बारूद भर रही हैं, खाना पीना ला रही हैं और ले जा रही हैं। देखो स्टुअर्ट, घायलों को संभाल रही हैं, किले की दीवारों की मरम्मत कर रही हैं। वो क्या नहीं कर रही? Oh my God, strange। हिंदुस्तान सिर्फ उड़ते हुए कालीनों और जादुई चिरागों का ही मुल्क नहीं है। स्टुअर्ट देखो, ये हिंदुस्तान ये किसी भी हालत में अपनी आजादी हमें नहीं सौंपेगा। It is a total wrap। Topchi, listen Topchi, अपनी टोप 30 degree east में घुमाओ and fire।

झांसी में भयंकर लड़ाई हुई, लाल लाल लहू और तपता हुआ लाल लाल लोहा। कालपी से मदद नहीं आ पाई। जागीरों और मनसबदारियों के लालच में देशद्रोहियों ने घात किया और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। झांसी छूट गई। उसकी नियति अब थी कत्लेआम, लूटपाट, कारत, सर्वनाश। अपनी आजादी को खोने की पहली कीमत। तीन हजार लाशों से पटी पड़ी थी झांसी और लाशों पर अंग्रेजों का शासन।

0: अंग्रेजी फौजें रानी के पीछे थी। रानी मुकाबला करती हुई कालपी पहुंची।
1: कालपी में तात्या टोपे थे, नाना साहब के भाई राव साहब थे, बांदा के नवाब और दूसरे लोग, और अब उनमें शामिल हो गई झांसी की रानी।
2: अंग्रेजों का चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। बुंदेलखंड की रक्त रंजित धरती के चप्पे चप्पे पर लोहा और लहू की जुझारू जंग। तमाम गढ़ियां और गढ़ हाथ से निकलते जा रहे थे। देशभक्त शहीद हो रहे थे और विश्वासघाती माला माल। स्वतंत्रता का संग्राम अभी जारी रखना था।
0: कालपी के परामर्श में निश्चित किया गया कि गतिविधियों के केंद्र के रूप में किसी दुर्ग को पहले अधिकार में लिया जाए। इसके लिए ग्वालियर निकटतम था। सदियों पुराना, मजबूत और अभेद्य ग्वालियर का किला। क्रांतिकारियों ने उसे चुना और उस तरफ कूच की।
1: ग्वालियर की सेना ने विप्लवियों का साथ दिया और 2 जून को ग्वालियर के लासानी दुर्ग पर क्रांति का परचम लहराने लगा।

3 जून को राव साहब ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें पेशवाई के लिए उनका राज तिलक किया गया। आमोद प्रमोद, उत्सव रागरंग, विजया भंग, मस्ती की तरंग में माहौल डूब गया।

0: इस राग रंग से निस्पृह रानी आसन्न भवितव्य के संकेतों को अनुभव कर रही थी। विजयोत्सव की धमक से नितांत अलग उन्हें दिखाई दे रही थी आकाश पर कौंधती हुई बिजलियां और उनकी विनाशक चमक।
1: तांतिया साहब, राव साहब और उनके दरबारियों की भांग का नशा उतरा कि नहीं?
2: और बिगाड़ा होता जा रहा है भाई साहब। घुंघरुओं की रुंझुन में उन्हें कुछ और सुनाई नहीं देता।
1: जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।
2: समाचार अच्छे नहीं है भाई साहब। हिरोज कालपी से चल पड़ा है और उसकी फौज ग्वालियर को कई तरफ से घेरने ही वाली है। आगरा वाले रास्ते पर अंग्रेजों का जमावड़ा है। पूरब में भी रास्ता रोक लिया गया है।
1: राव साहब नहीं सोचते तो आप ही कुछ करिए तांतिया साहब। ये व्यूह रचना कहीं चक्रव्यूह न बन जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और आप ही इसके लिए समर्थ हैं।
2: लेकिन यहाँ के सिपाही हमारा साथ नहीं देंगे भाई साहब।
1: लेकिन संग्राम तो जारी रखना ही होगा तांतिया साहब। अशनी संकेत बहुत उजागर हैं। पता नहीं स्वराज के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा।
2: वैसे ही जैसी स्वतंत्रता की सुदीर्घ परंपरा रही है, त्याग तपस्या बलिदान से अपने रक्त और अपनी जान से नींव भरने की आवश्यकता है, तभी इस नींव पर भव्य प्रासाद खड़ा हो सकेगा।
1: तांतिया साहब, होनी को कौन टाल सकता है? यदि ग्वालियर में हम हारते हैं तो दक्षिण का रास्ता बचा कर निकलने के लिए सुरक्षित रखना होगा। शायद वहीं से संग्राम को जारी रखा जा सके।
2: ध्यान रखा जाएगा भाई साहब। पहले तो ग्वालियर में ही पूरी ताकत से जूझना होगा।
1: जूही, सुंदर और मुंदर, मेरी प्यारी बहनों, मुझे दो वचन दो। एक तो मेरी देह फिरंगियों के हाथ नहीं लगे और दूसरा ये कि मेरे पुत्र दामोदर राव को तुम लोग सुरक्षित दक्षिण तक पहुंचा दोगी। वचन दो बहनों, ये रोने धोने का समय नहीं है। हंसते हंसते अपने आप को मातृभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर कर देने की घड़ी है। बावरी बहनों, ऐसे धन्य और पुण्य क्षण सभी के भाग में नहीं होते। मौत की आंखों में आंखें डालकर कहो, हम तेरा आलिंगन करने के लिए तैयार हैं।
3: जी जी रानी साहब, हम तैयार हैं।

0: 18 जून 1858 का लाल सवेरा। जनरल स्मिथ की फौज ने राव साहब के मोर्चों पर निर्णायक हमला किया और मोर्चे बिखरने लगे। ग्वालियर के सिपाही अंग्रेजों के साथ जा मिले। धरती पर होड़ लेता हुआ शहीदों का बहता हुआ लहू। अब आमने सामने की लड़ाई थी। मारो काटो के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तलवार और लहू, आजादी की ललक प्राणों का मोल मांग रही थी।
1: रानी युद्ध के खुले मैदान में कूद पड़ी।
2: देखो, उसको मारो। देखना, संभल के।
1: उनके साथ थे उनके विश्वसनीय साथी रघुनाथ सिंह, मुंदर, गुल मोहम्मद और बालक दामोदर राव की रक्षा में जुटा रामचंद्र राव देशमुख।
0: अंग्रेज सैनिक लगातार रानी का पीछा कर रहे थे। अंग्रेज रानी के आसपास तक पहुंच गए।
3: गुल मोहम्मद भाई साहब गिर गई है।

0: बाबा भाई साहब ने कहा था कि उनकी देह को विदेशी छू भी ना पाए।
1: वही होगा गुल मोहम्मद, वही होगा। इस बाबा गंगादास की कुटी किस दिन काम आएगी। जल्दी करो, रानी को कुटी में पधराओ और कुटिया को चिता बनाकर हम इस पार्थिव देह को अग्नि स्नान करा दें।
0: जी बाबा, ताकि ताकि चिता की राख भी पापी फिरंगी छू ना सके। हाँ। इसका इंतजाम भी करना होगा बाबा।
1: हाँ।
0: यहाँ पर एक बाजार बनानी होगी, तुरंत फरत बनानी होगी बाबा, तुरंत फरत।
2: हाँ कुल मोहब्बत, ये समाधि रानी साहिबा की यादगार होगी।

0: कार किसी दिवंगत स्वप्न या अस्तमान संकल्प की नहीं, बल्कि परंपरा का एक उज्ज्वल प्रस्थान बिंदु, जहां सुनाई देगा समय देवता का गुरु गंभीर स्तवन घोष। रास्ता यहीं ठहर नहीं जाता, यहां इति नहीं है। मनुष्य की अजेय आत्मा और मुक्ति की अदम्य वांछा का प्रारंभ है ये इतिहास की अनवरतता, एक भव्य और प्रशस्त पथ।
1: पीढ़ियां इस राह पर चलेंगी, स्वनाम धन्य शहीदों का साया उनका मंगल आख्यान होगा, लघु से महत तक की अनंत यात्रा। यही है हमारी प्रतिबद्धता, हमारी विरासत और हमारा पाथेय। अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के एक साथ आने से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वर्ष में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार रात 12 बजे खोले गए। बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लखीसराय में भगदड़

0: के कारण लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। देश की आज़ादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। मौसम विभाग ने आज सीधी, मऊगंज और डिंडौरी जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और FIH हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अच्छी नींद के महत्व की। अच्छी नींद हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद समय पर हो तो उसके अनेक लाभ हैं, जैसे शरीर को आराम और ऊर्जा मिलती है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और याददाश्त भी बेहतर होती है, ध्यान और सीखने की क्षमता बढ़ती है और तनाव और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। अच्छी नींद स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ पर्याप्त नींद लेने से शरीर और मन बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए नींद को केवल आराम नहीं बल्कि स्वास्थ्य की आवश्यक ज़रूरत समझना चाहिए। और श्रोताओं, अच्छा संगीत भी तनाव को कम करने में सहायक होता है, तो सुनते हैं एक मधुर गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है भेंट वार्ता का। आइए अब आपको सुनवाते हैं नवजात शिशु की देखभाल विषय पर डॉक्टर अंशु नारंग से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नवजात शिशुओं की देखभाल के संदर्भ में। और जब बात नवजात शिशुओं की है तो निश्चित रूप से हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आप हैं डॉक्टर अंशु नारंग, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी नवजात शिशु की बात आती है
2: जी,
1: तो नवजात शिशु के आने पर प्रसन्नता और खुशी और उसके स्वागत की बात तो एक बहुत अलग पक्ष हो जाता है, जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है
2: जी।
1: लेकिन जब उसकी सुरक्षा की या उसके देखभाल की बात आती है तो कई बार, विशेषकर जो नए माता पिता होते हैं, जो एकल परिवार के रूप में रह रहे हैं, उनके सामने कई सारे प्रश्न हो जाते हैं
2: जी।
1: तो हमें वो कौन सी बेसिक चीज़ें या कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए नवजात शिशुओं की देखभाल के संदर्भ में, ताकि वो स्वस्थ रह सकें और उनका विकास एक नियमित क्रम में हो पाए
2: जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और कहा, जैसे कि एकल परिवार होता है, जैसे पहले होते थे संयुक्त परिवार, तो कोई ना कोई घर का बुजुर्ग होता था जो एक मार्गदर्शन दे पाता था
1: जी।
2: लेकिन उसकी जगह एक बात ये भी अच्छी हुई है कि आजकल ज़्यादा प्रसव जो हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, और कोशिश रहती है सरकार की भी कि दूर दराज के क्षेत्रों की भी जो माएँ हैं उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो आशा बहनें हैं वो सही समय पर प्रसव के लिए अस्पताल में ले आती हैं, तो उन्हें उचित देखभाल डॉक्टरी और सिस्टर्स जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनके साथ में मिल जाता है। पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं, जो जिनका पहला शिशु हुआ है उनको बहुत सारी जानकारी नहीं रहती, और दूसरा ये भी हुआ है कि कई बार जानकारी जो रहती है जो आप सोशल मीडिया से या जो आप दूसरे जगहों से लेते हैं वो गलत जानकारी होती है
1: जी।
2: तो उसका भी निदान डॉक्टर्स कर पाते हैं। तो उसमें देखभाल में सबसे पहले जो तीन चीज़ों का ख्याल नवजात शिशु के लिए रखना चाहिए, एक है उसका आहार, दूसरा है उसका तापमान यानी टेम्परेचर मेंटेन होना, और तीसरा बीमारी से या इन्फेक्शन से उसका बचाव
1: जी। निश्चित रूप से आहार तो वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पक्ष होता है
2: जी,
1: जिसकी लगातार जरूरत पड़ती है
2: जी।
1: और नवजात शिशु के लिए शायद ये जरूरत बहुत छोटे छोटे अंतराल के बाद होती है
2: जी।
1: तो इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह से ये दिया जाना चाहिए? और नवजात शिशु का आहार मतलब माँ के दूध की
2: जी,
1: ही बात है
2: बिल्कुल।
1: तो वो जो भ्रांतियां हैं और जो वास्तविक तथ्यात्मक रूप में होना चाहिए
2: जी,
1: वो हम आपसे जानना चाहेंगे
2: जी। शिशु का, जैसा आपने कहा कि सर्वोत्तम जो उसका आहार है वो है उसकी माँ का दूध, और माँ का दूध जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके एक घंटे के अंदर अंदर शुरू किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। और उसे कहा भी जाता है कि वो गोल्डन पीरियड है
1: जी।
2: तो गोल्डन पीरियड में उस बीच में अगर एक घंटे के अंदर अंदर, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधे घंटे के अंदर, और अगर ऑपरेशन भी हुआ है तो एक घंटे के अंदर शिशु को माँ के दूध पे लगाना चाहिए, स्तन पे लगाना चाहिए, जिसको माँ का दूध उसको मिल सके। क्योंकि शुरू में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और अगर उसकी रिफ्लेक्सेस यानी बच्चा बहुत सचेत होता है शुरू के 2-3 घंटे में, और उस समय अगर वो सक करे तो माँ भी तनाव मुक्त होती है, और शिशु को भी जो शुरू का दूध मिलता है वो उसकी ज़रूरत 5-6 घंटे तक पूरी करता है। उसके बाद शुरू होता है कि बच्चे का आहार खुद से लेना। तो ये कहा जाता है कि शुरू के 72 घंटे तो माँ को थोड़ा सा, और माँ अगर मान लो ऑपरेटेड भी है तो जो साथ में उनके केयर टेकर्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो हर 2-3 घंटे में बच्चे को माँ के दूध पे लगाएं, और कम से कम उसको सही पोजीशन में लेटा के 15-20 मिनट कम से कम एक स्तन पे लगा के रखें। और फिर जैसे जैसे बच्चा 3-4 दिन का हो जाता है तो उसका शेड्यूल अपने आप बनने लगता है, जिसे हम लोग डिमांड फीडिंग बोलते हैं। बच्चा खुद इशारा देता है रोके कि वो भूखा है, और तब माँ अपने स्तन पे लगाए तो वो अच्छे से अपना आहार लेता है। ये भी यहाँ कहना चाहेंगे कि जो बहुत कम दिन के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम प्री टर्म बेबीज बोलते हैं, जो 37 वीक्स से पहले डिलीवर हो गए होते हैं, या जिनका वजन कम होता है 2.5 किलो से कम, और भी छोटे अगर हुए तो 2 किलो से कम जो बच्चे होते हैं, वो कभी कभी ये इशारा नहीं दे पाते, तो उनमें हमें ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप रेगुलर बिल्कुल 2-3 घंटे के बाद में उन्हें उठा के और माँ के स्तन पे लगाइए और थोड़ी देर उसको रखिए। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में आपने हटा लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पोजीशन देने में कई बार टाइम लगता है, तो उस चीज़ को संभलते हुए समझते हुए कम से कम 15-20 मिनट तक माँ के दूध पे लगाना चाहिए
1: जी। कई बार डॉक्टर साहब कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब वास्तव में माँ का दूध नहीं आता है
2: जी,
1: तो उस स्थिति में क्या करें और क्या करना चाहिए?
2: दूध ना आना, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये बात, ये जो संशय है ये माँ के मन में आया कैसे, क्योंकि जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल फेलियर, प्राकृतिक रूप से दूध आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज जो शरीर में बदलाव आते हैं प्रसव के बाद में, जो हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं उससे अपने आप ये प्रोसेस शुरू होती है, ये कुदरती है, इसे रोक नहीं सकते। डिलीवरी हुई है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन तो आएगा ही आएगा। अब उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? बच्चा जब माँ के दूध पे लगेगा, स्तनपान करेगा, तो वो हार्मोन और एक्टिवेट होता है और क्रियाशील होता है और उसको दूध मिलने लगता है। लेकिन कभी कभी जब बच्चा रोता है तो माँ सोचती है कि हर बार वो भूख के कारण रोया, लेकिन उसके पास एक ही इशारा है, उसकी कोई भी ज़रूरत हो तो वो सिर्फ रो के उस तरफ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करेगा, जिसमें मान लो उसने कुछ गीला किया है, यूरिन पास किया है, मोशन पास किया है, या कोई उसे चीज़ गड़ रही है, चुभ रही है, या उसने कुछ करवट लेना चाहता है, या उल्टी आ रही है, उसका तापमान ठीक नहीं है, ज़्यादा गर्म या ठंडा लग रहा है, तो भी वो इसी तरह से इशारा देगा। तो हर इशारा भूख का इशारा नहीं होता, वो धीरे धीरे माँ समझने लगती है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि दूध नहीं मिल पाए किसी शिशु को, तो अनफॉर्चुनेटली अगर माँ नहीं है किसी वजह से, तो फिर वहाँ ये समस्या आती है कि कैसे दिया जाए, या अगर किसी माँ को वही अगर कैंसर से वो पीड़ित हो और उनकी दवाई चल रही हो, थेरेपी चल रही हो, तो ऐसे में फिर माँ का दूध मना किया जाता है
1: जी।
2: तो उसमें भी एक ऑप्शन ये रहता है कि उसी वक्त अगर घर में कोई और धात्री माता, जिसे हम लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, वो अगर हैं तो उनकी सहायता ली जा सकती है। या आजकल तो फिर एक नई चीज़ जो आई है और काफ़ी दिनों से ये उसका प्रमोशन भी है, ह्यूमन मिल्क बैंकिंग
1: जी।
2: तो कई सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी सुविधा है कि माँ का दूध, अन्य माओं से लिया हुआ दूध प्रोसेस करके रखा जाता है और इन बच्चों को उससे लाभान्वित किया जा सकता है
1: जी।
2: और फिर भी अगर ऐसी समस्या है कि नहीं है, तो उसमें खुद से कोई अपने मन से पाउडर का दूध शुरू करें, या जानवर का दूध जैसे गाय भैंस का लोग शुरू कर देते हैं, वो करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें और उनके डायरेक्शन में, उनके बताए हुए निर्देशों पे करें, अपने हिसाब से लाके कोई भी मार्केट में मिलने वाले फॉर्मूला मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो देना ठीक नहीं रहता।
1: बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ महिलाएं ध्यान देंगी, उनके घर परिवार के लोग ध्यान देंगे
2: जी,
1: ताकि जो वो चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे और बेहतर विकास हो, वो हो सके
2: जी।
1: डॉक्टर साहब, आपने देखभाल के संदर्भ में तापमान की बात की
2: जी, बिल्कुल।
1: तो तापमान से क्या तात्पर्य है और किस तरह से मेंटेन किया जाए?
2: छोटे बच्चे का जो तापमान है वो अगर दो है, उसमें एक तो बच्चे का खुद का तापमान और आसपास की एम्बियंस जो है, तो खुद का तापमान याद करने के लिए एक छोटी सी चीज है कि आप उसके पाँव को छू के देखिए, अगर पाँव गर्म और गुलाब

0: अभी है, जो कि तापमान छाती पे हाथ रखने से आता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा न लपटें और बहुत ही ज़्यादा खुला भी ना छोड़ें। और ख़ासतौर से नहलाते समय या कपड़े चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा बहुत गर्म ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। रूम को उतना ही गर्म लगे जिसमें थोड़ा सा एंटर करने पे आपको लगे कि हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है। डायरेक्ट ब्लोअर के सामने या हीटर के सामने रखना ठीक नहीं है। और मौसम के अनुकूल उसका टोपा, मोजे, मिटन्स, इन सब का यूज करें, जिससे कि बच्चा पर्याप्त। और एक चीज और, अगर वो माँ से चिपका हुआ रहे, जैसे हम कंगारू कहते हैं, वो अगर माँ से चिपका हुआ रहे, माँ का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिले, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरल वार्मर का काम करता है। तो कंगारू केयर बोलते हैं, माँ का स्किन और बच्चे की स्किन आपस में रहे तो तापमान वैसे ही मेंटेन होता है
1: जी। और इन्फेक्शन वाली चीज़ भी एक रहती है कि संक्रमण बच्चों में होता है या उससे कैसे बचा जाए किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो।
0: जी, इसमें बस दो तीन चीज़ें हैं। एक पन्ने पहले बात की, जैसे कि आहार से संबंधित, अगर उसको सही आहार मिले, माँ के दूध के अलावा किसी भी और तरह का दूध, पानी, जायफल, घुट्टी या शहद ना दी जाए, तो एक इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है जो बच्चे को ज़्यादा हैंडल कर रहा है, तो वो बच्चे में ये इन्फेक्शन दे सकता है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रखें। और अगर माँ को भी मान लो सर्दी खांसी या इस तरह की कोई चीज़ है, तो मास्क लगाकर या दुपट्टा या साड़ी से नाक मुंह को कवर करके फीड करा सकती है। और ज़्यादा लोग हैंडल ना करें, बहुत लोग एक गोदी से दूसरी गोदी में जब बच्चा जाता है तो वो साथ में इन्फेक्शन की संभावना रहती है। और तीसरा जो होता है वो स्किन के इन्फेक्शन, स्किन को भी जैसे है कि तरह तरह के साबुन तेल इनका इस्तेमाल किया, या जो हमारी कुछ कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आटे की लोई लगा दी या फिर नाक कान में तेल डाल दिया, तो नाभि पे तेल लगा दिया, इन सब चीज़ों से भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर ये सब ना करें, बच्चे को बिल्कुल क्लीन रखें, माँ के दूध पे रखें और ज़्यादा लोग हैंडल ना करें, तो ये छोटी छोटी सावधानियों से ही बच्चा स्वस्थ रह सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि जब तक अस्पताल में है
0: जी,
1: तब तक तो केयर और मार्गदर्शन दोनों ही मिलते रहते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: लेकिन जब वो डिस्चार्ज होके घर आता है
0: जी,
1: तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें अपनी केयर ज्यादा बेहतर तरीके से
0: जी
1: खुद करनी है
0: जी।
1: तो उस समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना
0: जी
1: चाहिए?
0: उनमें छोटी छोटी बातें हैं कुछ, कि अगर मान लो, वैसे कहा जाता है कि अगर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और घर में भेज दिया गया है, तो भी सब कुछ ठीक होते हुए भी एक हफ्ते बाद डॉक्टर के पास में जरूर जाना चाहिए। लेकिन वार्निंग साइंस, मतलब जिसमें सावधान रह के वो लक्षण पहचानना है, उनमें जो है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोए, दूध पीने के बाद में भी बहुत रोता रहे, या इतना सुस्त रहे कि दूध पीने के लिए 3-4-5 घंटे में उठे ही ना हो, ये हो गया, या फिर अगर उसका पेट फूला हुआ दिखे, या उल्टियां कर रहा हो, बहुत ज़्यादा नीला पड़े, खासतौर से हाथ और पांव जो नीले होते हैं वो तो तापमान अगर ठीक रहे तो नहीं होता, लेकिन होंठ अगर नीले रहने लगे, दूध पीते पीते एकदम से चोक करे, या एकदम से पीला दिखने लगे। जॉन्डिस की जांच हालांकि अस्पताल में करके भेजा जाता है, पर घर जाके यकाएक बच्चा ज़्यादा पीला दिख रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या बिहेवियर बच्चे का जो लगे कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो अलग हो रहा है, तो उसको ये सोच के ये ठीक हो जाएगा ना करे, तुरंत डॉक्टर के पास जाके, ये वार्निंग साइंस है जिससे वो पहचान सकती है कि डॉक्टर के पास जाके और तुरंत बच्चे का चेकअप कराए।
1: यानी किसी भी तरह की जो असहजता है
0: जी, बिल्कुल,
1: वो यदि आपको दिखाई दे रही है तो उसे शंका मान के छोड़े नहीं,
0: बिल्कुल,
1: एक बार उसको रेक्टिफाई जरूर कराएं, डॉक्टर से संपर्क करके एक बार उसको देखा जरूर
0: जी, बिल्कुल।
1: टीकाकरण यूं तो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी लोग इस बारे में जानते हैं, फिर भी चलते चलते अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी टीकाकरण है जो महत्वपूर्ण
0: जी
1: है।
0: एक तो टीकाकरण ये कि जो बच्चे ने माँ का दूध शुरू में पिया उसको भी एक तरह का टीका ही माना जाता है, जन्म पे BCG, हेपेटाइटिस और पोलियो, ये तीनों टीके लगते हैं, और बाकी तो फिर शेड्यूल के हिसाब से जो सरकारी टीकाकरण का अपना प्रोग्राम है वो नेशनल शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड दे दिया जाता है और उसके हिसाब से टीकाकरण कराते रहे।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने देखभाल के संदर्भ में बताई, हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों का ध्यान रख के निश्चित रूप से नवजात शिशु को हम बेहतर विकास की ओर मोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, और बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी की ओर, जिसमें आज का हमारा विषय है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी में एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर द्वारा बनाई गई डिजिटल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर, 3D मॉडल या निर्देशों को वास्तविक दुनिया के स्वरूप में डिस्प्ले किया जाता है। बात करते हैं।

अब इसके उपयोग की मेडिकल स्टूडेंट्स 3D मॉडल के माध्यम से ह्यूमन एनाटॉमी को आसानी से समझ सकते हैं। सर्जरी में इस तकनीक के उपयोग से काफ़ी मदद मिलती है। ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने में भी किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पेशलिस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्निक से मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एक वरदान की तरह है। श्रोताओं, आइए आनंद लेते हैं एक और मधुर गीत का।

कार्यक्रम में अब समय हो गया है हेल्थ टिप्स का। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, हो सके तो रात में भोजन हल्का व समय पर करें। कोल्ड ड्रिंक्स,

ज्यादा चाय कॉफी के सेवन से परहेज करें, फूड डायरी बनाएं और लिखें किन किन चीजों से परेशानी बढ़ती है, और हो सके तो अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। रोज थोड़ा टहलें, पर्याप्त पानी पिएं और तनाव को कम रखने की कोशिश करें। तो श्रोताओं, इसी आशा के साथ कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दया भार्गव और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले आप देवी गीत सुनेंगे, इसके बाद बधाई गीत, और फिर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे हरदौल गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं अविनाश त्रिपाठी। इनके स्वर में आज आप सुनेंगे कुछ भजन और गीत, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए हुए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर डायरेक्ट टू होम डीटीएच।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी भोपाल से जरूर सुने हमारा उर्दू कार्यक्रम कहकशां, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 10 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सिंधित्व की खुशबू से सराबोर सिंधी कार्यक्रम सुनना न भूलें प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

नगीना फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सी अर्जुन के संगीत निर्देशन में अब आइए सुनते हैं उषा मंगेशकर का गाया हुआ गीत। शब्द रचना प्रदीप की है और फिल्म का नाम है रक्षाबंधन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के समापन पर आज कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा इस मौके पर निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वयं तिरंगा लहराकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थ बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट पहनकर अपने वाहनों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा वाहन यात्रा की शुरुआत कमिश्नर कार्यालय से हुई, जिसके बाद ये काफिला कंट्रोल रूम तिराहा, जेल रोड, एमपी नगर थाना तिराहा और शौर्य स्मारक, रोशनपुरा चौराहा, बाणगंगा तथा पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए रेत घाट की ओर रवाना हुआ। इसके बाद यात्रा ने वीआईपी रोड, करबला और लालघाटी चौराहा पहुंचकर शहर के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। लालघाटी से यात्रा वापस वीआईपी रोड की ओर मुड़ी और रेत घाट, कमला पार्क और लोक भवन होते हुए वापस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही हैं। आगरमालवा जिले के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव के रूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी आज शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से निकाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आरती के बाद सोमवार उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के संयोग पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट कल रात 12 बजे खोले गए, जो 24 घंटे तक खुले रहेंगे। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की नागराज की फणों के नीचे विराजमान दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। अभी तक कई लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सावन सोमवार पर महाकाल मंदिर के पट के 2:30 बजे खोले गए और भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्दी ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। आज नई दिल्ली में सार्वजनिक बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। नीति तय करने में विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विकसित भारत की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही हैं। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संत गुरु रविदास जी के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में छिंदवाड़ा जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
3: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्बे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
5: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
6: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, बारिश का मौसम, जैसे प्रकृति ने धरती के माथे पर फिर से हरी चुनर ओढ़ा दी हो, सूखी डालियों पर उम्मीदें उतर आई हैं, मिट्टी की सूंधी सी खुशबू में जैसे कोई नया सपना जन्म ले रहा है, और आसमान से बरसती हर बूंद मन के भीतर कुछ भिगो रही है। दोस्तों, ये मौसम सिर्फ धरती के खिलने का नहीं है, मन के खिलने का भी मौसम है। ये जहां बादलों की ओट से झांकती धूप हमें याद दिलाती है कि हर उदासी के बाद उजाला जरूर आता है, हर सूखेपन के बाद हरियाली जरूर लौटती है, और हर ठहराव के बाद जीवन फिर से अपनी गति पकड़ता है। तो आइए सुहाने से इस मौसम में इन पलों में आपकी फरमाइश को शामिल करें, इन पलों को आपकी फरमाइशों से सजाएं और आपकी पसंद पर कुछ नगमे गुनगुनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश है। ये नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। और इसी गीत को पसंद करते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा आर्य।

पूर्णिमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और अब आइए बढ़ते हैं आपकी फरमाइश के साथ आगे। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, संगीत शंकर जयकिशन का है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और फिल्म का नाम है एक दिल सौ अफसाने। अनुरोध आप सबका है सादुल शहर राजस्थान से, ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। और ये चिट्ठी आई है कमर कॉलोनी बड़वाह से, लिखने वाले श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ये चिट्ठी आई हुई है जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर से। लिखने वाले श्रोता हैं तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी। और इसी गीत को पसंद करते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं दो बदन फिल्म का गीत, आवाज़ आशा भोसले की है। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशक हैं रवि।

गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी खत लिख भेजा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, रजिया, जुनैद, अलीना, आयत और मुआज। और ये चिट्ठी आई हुई है दिल्ली शहर मोरी गेट से। लिखने वाले श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अनुपमा फिल्म का नाम है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, बोल कैफी आजमी के और धुन हेमंत कुमार की। अनुरोध आप सबका है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता अर्जुन गम्हाणकर टुक टुक, आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित गम्हाणकर और ध्वनि गम्हाणकर परी।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म आरती से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और धुन रोशन की। पसंद आप सबकी है। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से रेवा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ से ही दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुर से

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हो रहा है। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा इस मौके पर निकाली गई। संत गुरु रविदास जी की समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में आज PV सिंधु का सामना आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना स्पेन के पॉला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:00।

6:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल आप सुनेंगे 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10 बजे। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे ध्यानेश खान का सरोद वादन राग मांझ खमाज। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का निर्धारित क्रम लोक रंग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए दया भार्गव और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। सबसे पहले आप सुनेंगे देवी गीत, उसके बाद बधाई गीत और अंत में हरदौल गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दया भार्गव और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिए। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं अविनाश त्रिपाठी। इनके स्वर में कुछ गीत और भजन आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए हुए कुछ भजन और गीत। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हेमलता की आवाज में आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत मदन मोहन का, आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम मौसम।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों को। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है। टीम में विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव होंगे, जबकि पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे। मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हो रहा है। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। संत गुरु रविदास जी के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में आज भारत की PV सिंधु का सामना आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना स्पेन की पॉला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स से होगा। और मौसम विभाग ने आज शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: दोस्तों, अभी आप मिताली सिंह की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था मलिक गुमनाम का। दोस्तों, चलिए अब प्रोग्राम को इसके आखिरी पड़ाव के जानिब ले चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात उन जज्बों से होगी जो क्लासिकी रिवायत की चाशनी लिए दौरे हाजिर के मसाइल से हम कलाम हैं। समाअत कीजिए परवीन सबा का कलाम खुद उनके मखसूस अंदाजे बयां में।
1: गजल का मतला हाजिर है, अर्ज किया है कि सबा हूँ सुबह हो के हमराह चल के देखती हूँ, सबा हूँ सुबह हो के हमराह चल के देखती हूँ, सुकून तो शब से बाहर निकल के देखती हूँ, ख्यालो ख्वाब के मौसम बदल के देखती हूँ, घरों दे रेत के मैं भी कुचल के देखती हूँ। सुना है मैंने ये दुनिया हसीन लगती है, सुना है मैंने ये दुनिया हसीन लगती है, अगर ये सच है तो घर से निकल के देखती हूँ। बड़ा ही लुत्फ है चाहत में दिल जलाने का, बड़ा ही लुत्फ है चाहत में दिल जलाने का, वफा की आग में अब मैं भी जल के देखती हूँ। वफा को मेरी कहाँ तक कबूल करता है, वफा को मेरी कहाँ तक कबूल करता है, तेरे खुलूस के साए में ढल के देखती हूँ। तू मेरे हाथ की रोशन लकीर हो जाए इसी सबब से अभी ख्वाब कल के देखती हूँ, तू मेरे हाथ की रोशन लकीर हो जाए इसी सब देख मिल जाएं, नए जमाने के रोशन नक्कूश मिल जाएं, रिवायतों की हकीकत में ढल के देखती हूँ, सबा हूँ सुबह हो के हमराह चल के देखती हूँ, सुकून तो शब से मैं बाहर निकल के देखती हूँ। दूसरी गजल का मतलब हाजिर कर रही हूँ, अर्ज किया है कि हर एक लम्स में खुशबू हर एक बात में रंग, हर एक लम्स में खुशबू हर एक बात में रंग, न जाने आए कहाँ से मेरी हयात में रंग, हर एक लम्स में खुशबू हर एक बात में रंग, न जाने आए कहाँ से मेरी हयात में रंग, बहुत हसीन थी पहले भी जिंदगी लेकिन हुजूर आए तो आए हैं कायनात में रंग, हुजूर आए तो आए हैं कायनात में रंग, मेरे बगैर हर एक दास्तां अधूरी है, मेरे बगैर हर एक दास्तां अधूरी है, मेरी वफाओं से आते हैं वाकयात में रंग, मेरे बगैर हर एक दास्तां अधूरी है, मेरी वफाओं से आते हैं वाकयात में रंग, हमेशा देखोगे मुझको निगाह कीना से, नजर ना आएंगे तुमको मेरी हयात में रंग, नजर ना आएंगे तुमको मेरी हयात में रंग, वो जिसकी जिस्त का मतलब जर्फ परस्ती है, नजर ना आए उसे कायनात में रंग, बस एक बात सुनी थी जबान सादिक से, बस एक बात सुनी थी जबान सादिक से, महक उठे थे हर एक शख्स की सिफात में रंग, सुकून मुहाल है इंसान का जिंदगी में सबा, नजर ना आए अगर दिल की कायनात में रंग, नजर ना आए अगर दिल की कायनात में रंग, हर एक लम्हा तबाही का पेश खेमा है, बदल रहा है जो दुनियाए बेसबात में रंग, बदल रहा है जो दुनियाए बेसबात में रंग। एक और गजल हाजिर कर रही हूँ।

0: जब भी गजल पढ़े ये सबा वाह वाह। गजल का मतला हासिल कर रही हूँ आज, क्या है कि ले रहा है कहीं तन्हाई में बादल सांसे, इस पे अर्पण है मेरे उम्र की चंचल सांसे। ले रहा है कहीं तन्हाई में बादल सांसे, इस पे अर्पण है मेरे उम्र की चंचल सांसे। तेरे आने का अगर वक्त गुजर जाता है, तेरे आने का अगर वक्त गुजर जाता है, करने लगती हैं तेरी याद में हलचल सांसें, करने लगती हैं तेरी याद में हलचल सांसें। जब कभी हिजर की रातों का ख्याल आता है, जब कभी हिजर की रातों का ख्याल आता है, सब मुझे याद दिला देती हैं पागल सांसें, सब मुझे याद दिला देती हैं पागल सांसें। कौन किसके लबे शीरी का तलबगार हुआ, कौन किसके लबे शीरी का तलबगार हुआ, सब मुझे याद दिला देंगी यही कल सांसें, सब मुझे याद दिला देंगी यही कल सांसें। कोई सूरत भी नजर आया ना वहशत का इलाज, कोई सूरत भी नजर आया ना वहशत का इलाज। कैस की याद में भरने लगा जंगल सांसें, कैस की याद में भरने लगा जंगल सांसें। किससे मिलने की तमन्ना में गई है खुशबू, चाहती क्या है जो होने लगी बेकल सांसें। किससे मिलने की तमन्ना में गई है खुशबू, चाहती क्या है जो होने लगी बेकल सांसें। बात ये सबको बताने की नहीं मेरी सबा, बात ये सबको बताने की नहीं मेरी सबा, मैंने जो चूमी तेरी याद की कोपल सांसें, मैंने जो चूमी तेरी याद की कोपल सांसें। ले रहा है कहीं तन्हाई में बादल सांसें। बहुत बहुत शुक्रिया
1: सामईन। ये थी परवीन सबा जो अपने अशार के जरिए अपने एहसासात की तर्जुमानी कर रही थी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमारा अज्म हमेशा से यही रहा है कि आईना प्रोग्राम सिर्फ आपके कानों का रस ना बने बल्कि आपके एहसासात में हलचल भी पैदा कर दे। हमें यकीन है कि ख्यालात का ये तबादला आपके लिए बाइस मसर्रत रहा होगा। अपने कीमती राय और मशवरे हमें खतूत के जरिए जरूर भेजें। हमारा पता नोट फरमाइए। उर्दू प्रोग्राम आईना मार्फत, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम आईना को हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
8: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की 7वीं कड़ी।

सन 1857 के शुरुआती महीनों में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की अंगड़ाई साकार हुई। विदेश

दास्ता के जुए को कांधों से उतार फेंकने के लिए देशवासियों की पहली कोशिश, मातृभूमि की बलवेदी पर पहला अनुष्ठान, जनगण का पहला अभियान, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम।

0: आमने सामने की लड़ाई में कंपनी की फौज को भारी नुकसान सहना पड़ रहा था, लेकिन वो संभल गई। दक्षिण से बंबई और मद्रास से ताजा दम फौजें इकट्ठा की गईं, नए सेना नायक नियुक्त किए गए और स्वाधीनता संग्राम को चलने का नया दौर शुरू हुआ।
1: स्वाधीनता के सेनानियों में आग थी, उमंग थी, जोश था, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह था, लेकिन प्रतिरोध की कोई योजना या रणनीति उनके पास नहीं थी और इसलिए ये प्रतिरोध प्रतिशोध के उन्माद में सिमट कर रह गया।
2: विप्लवी दीवानों के पास कोई सेनानायक नहीं था और न ही कोई तालमेल। वो एक भीड़ की तरह आते थे और विनाश के पन्ने लिखकर इधर उधर छितरा जाते थे।
1: हैवलॉक, आउट्रम, नील आदि अंग्रेज सेनापतियों के नेतृत्व में फिरंगी फौजें पलटवार के लिए चल पड़ी। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एक के बाद एक पराभूत होते जा रहे थे।
2: जनरल विल्सन ने सितंबर में दिल्ली पर घेरा डाल दिया। अपने घुड़सवार टुकड़ी के साथ जनरल हडसन महल में घुस गया। बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर और मलिका जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया गया। हडसन ने खुद मुगल शहजादों को मौत के घाट उतार दिया।
1: जनवरी की 27 तारीख और वर्ष 1858, मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का दिल्ली के लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।
0: बहादुर शाह जफर को फांसी दिया जाना एक नई उत्तेजना और एक नए बवाल का सबब हो सकता था, इसलिए

0: और मुगल बादशाहत हमेशा के लिए इतिहास से विदा हो गई। सन 1858 के प्रारंभिक महीनों में उत्तर भारत के विप्लवी दस्तों की बड़ी और संयुक्त रूप से की जाने वाली कार्रवाइयां थम गई थीं। विद्रोही तितर बितर होकर छोटे छोटे गिरोहों में बट गए थे और छापामार शैली में हमले करके अंग्रेजों को खूब परेशान कर रहे थे।
1: हिमालय से लेकर बिहार और विंध्य पर्वतमाला तक और ग्वालियर दिल्ली से लेकर गोरखपुर दानापुर तक का समूचा भूभाग इन बिखरे हुए विप्लवियों से भरा हुआ था। वो पराजित अवश्य हुए, लेकिन ये पराजय अनिर्णीत थी। उनमें अभी भी उत्साह था। अंग्रेजों का कब्जा केवल शहरों तक था, अंचलों और जनपदों में विद्रोह अभी भी शेष और तपती गर्मी का मौसम अंग्रेजों के लिए प्रतिकूल।
0: संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र था कालपी, जहां नाना साहब की सेनाएं और रणबांकुरे सेनापति तात्या टोपे की मौजूदगी अंग्रेजों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रही थी। बुंदेलखंड और मध्य भारत, नाना साहब, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई से लोहा लेने चल पड़ा था जनरल यूरोज़।

0: फौज फिरंगी ने झांसी नगरी को घेरा। चढ़ आया यू रोज किले के बाहर डेरा। झांसी थी तैयार समर को रानी तत्पर। अंदेशा था पहले अब होनी टक्करी, अब होनी टक्करी, अब होनी टक्करी।
1: जनरल ह्यूरोज का फरमान आया है भाई साहब।
2: क्या चाहते हैं वो?
1: ह्यूरोज चाहता है कि झांसी समर्पण करते। आप अपने सरदारों के साथ बिना हथियार अंग्रेजों की छावनी में।
2: बस करो नाना साहब, ह्यूरोज अपनी कौम का दस्तूर ही निभा रहा है। झांसी की प्रजा इसका जवाब देगी।
3: हम लड़ेंगे और मर मिटेंगे
4: अपनी झांसी के लिए,
5: अपने रानी के लिए,
6: अपने देश के लिए, स्वराज के लिए।
7: लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।
3: यही उत्तर भिजवा दीजिए रानी साहिबा, झांसी का संदेशा जनरल ह्यूरोज के नाम।
2: जनता की ये आवाज साम्राज्यवाद के बहरे कानों में पहुंच गई होगी।

0: अब तुम लोगों की शूरवीरी और हथियारों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। लड़ाई में मोर्चे को संभालना, बैरी की योजना को समझकर उसे विफल करना, हथियार और अनुशासन, लड़ाइयाँ इनसे ही जीती जाती हैं।
1: फाटकों की हिफाजत और सैनिकों की रसद के प्रबंध कर दिए गए हैं महारानी, कोई कोताही नहीं होगी।
2: बैरियों को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा।
0: हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि किले से बाहर निकलकर नहीं लड़ सकते, इसलिए किले की पुख्ता हिफाजत करनी पड़ेगी। झांसी शहर पर भी विनाश के गोले बरसेंगे।
3: भाई साहब, पूरा प्रबंध कर लिया है। दिन रात तोपों की गरजने का, तोपचियों को रसद, खाना पीना, गोला बारूद लगातार पहुंचाया जाता रहेगा। दीवारों बुर्जों के टूटने चटकने पर कारीगर और गारा पत्थर भी फिल वक्त हाजिर रहेंगे। रानी साहिबा, किले के भीतर बारूद बनाने का पक्का इंतजाम है।
0: अच्छा है, मगर सावधान रहना, मैं किले के भीतर और बाहर मौजूद रहूंगी। नगर की गली गली में घूमूंगी और जनता को सचेत रखूंगी। हर एक फाटक की देखभाल करूंगी मैं।
3: जी रानी साहिबा।
4: वेल जनरल हीरोज, यहाँ से देखो, मोर्चा साफ साफ दिखाई देता है।
5: Yes, Stuart, I can see which I have never seen before. हाँ स्टुअर्ट, मैं देख रहा हूँ पहले जो कभी नहीं देखा, और शायद फिर कभी देखूंगा भी नहीं। हम औरतों से लड़ रहे हैं, मर्दाने लिबास में औरतें ही औरतें, लेकिन हम उनको पहचान सकते हैं। वो टोपे चला रही हैं, टोपों में बारूद भर रही हैं, खाना पीना ला रही हैं और ले जा रही हैं। वो स्टुअर्ट घायलों को संभाल रही हैं, किले की दीवारों की मरम्मत कर रही हैं। वो क्या नहीं कर रही? Oh my God, strange. हिंदुस्तान सिर्फ उड़ते हुए कालीनों और जादुई चिरागों का ही मुल्क नहीं है। स्टुअर्ट देखो, ये हिंदुस्तान ये किसी भी हालत में अपनी आजादी हमें नहीं सौंपेगा। It is a total wrap. Topchi, listen Topchi, अपनी टोप 30 degree east में घुमाओ and fire.

लाल लाल लहू और तपता हुआ लाल लाल लोहा। कालपी से मदद नहीं आ पाई। जागीरों और मनसबदारियों के लालच

0: अंग्रेजी फौजें रानी के पीछे थी। रानी मुकाबला करती हुई कालपी पहुंची।
1: कालपी में तात्या टोपे थे, नाना साहब के भाई राव साहब थे, बांदा के नवाब और दूसरे लोग, और अब उनमें शामिल हो गई झांसी की रानी।
2: अंग्रेजों का चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। बुंदेलखंड की रक्त रंजित धरती के चप्पे चप्पे पर लोहा और लहू की जुझारू जंग। तमाम गढ़ियां और गढ़ हाथ से निकलते जा रहे थे, देशभक्त शहीद हो रहे थे और विश्वासघाती माला माल। स्वतंत्रता का संग्राम अभी जारी रखना था।
0: कालपी के परामर्श में निश्चित किया गया कि गतिविधियों के केंद्र के रूप में किसी दुर्ग को पहले अधिकार में लिया जाए। इसके लिए ग्वालियर निकटतम था। सदियों पुराना, मजबूत और अभेद्य ग्वालियर का किला। क्रांतिकारियों ने उसे चुना और उस तरफ कूच की।
1: ग्वालियर की सेना ने विप्लवियों का साथ दिया और 2 जून को ग्वालियर के लासानी दुर्ग पर क्रांति का परचम लहराने लगा।

ग्वालियर पर राव साहब का अधिकार हो गया। 3 जून को राव साहब ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें पेशवाई के लिए उनका राज तिलक किया गया। आमोद प्रमोद, उत्सव राग रंग, विजया भंग, मस्ती की तरंग में माहौल डूब गया।

0: इस राग रंग से निस्पृह रानी आसन्न भवितव्य के संकेतों को अनुभव कर रही थी। विजयोत्सव की धमक से नितांत अलग उन्हें दिखाई दे रही थी आकाश पर कौंधती हुई बिजलियां और उनकी विनाशक चमक।
1: तांतिया साहब, राव साहब और उनके दरबारियों की भांग का नशा उतरा कि नहीं?
2: और बिगाड़ा होता जा रहा है भाई साहब। घुंघरुओं की रुंझुन में उन्हें कुछ और सुनाई नहीं देता।
1: जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।
2: समाचार अच्छे नहीं है भाई साहब। युरोज काल्पी से चल पड़ा है और उसकी फौज ग्वालियर को कई तरफ से घेरने ही वाली है। आगरा वाले रास्ते पर अंग्रेजों का जमावड़ा है। पूरब में भी रास्ता रोक लिया गया है।
1: राव साहब नहीं सोचते तो आप ही कुछ करिए तांतिया साहब। ये व्यूह रचना कहीं चक्रव्यूह न बन जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और आप ही इसके लिए समर्थ हैं।
2: लेकिन यहाँ के सिपाही हमारा साथ नहीं देंगे भाई साहब।
1: लेकिन संग्राम तो जारी रखना ही होगा तांतिया साहब। अशनी संकेत बहुत उजागर हैं। पता नहीं स्वराज के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा।
2: वैसे ही जैसी स्वतंत्रता की सुदीर्घ परंपरा रही है, त्याग तपस्या बलिदान से अपने रक्त और अपनी जान से नींव भरने की आवश्यकता है, तभी इस नींव पर भव्य प्रासाद खड़ा हो सकेगा।
1: तांतिया साहब, होनी को कौन टाल सकता है? यदि ग्वालियर में हम हारते हैं तो दक्षिण का रास्ता बचा कर निकलने के लिए सुरक्षित रखना होगा। शायद वहीं से संग्राम को जारी रखा जा सके।
2: ध्यान रखा जाएगा भाई साहब। पहले तो ग्वालियर में ही पूरी ताकत से जूझना होगा।
1: जूही, सुंदर और मुंदर, मेरी प्यारी बहनों, मुझे दो वचन दो। एक तो मेरी देह फिरंगियों के हाथ नहीं लगे।

0: और दूसरा ये कि मेरे पुत्र दामोदर राव को तुम लोग सुरक्षित दक्षिण तक पहुंचा दोगे। वचन दो बहनों, ये रोने धोने का समय नहीं है। हंसते हंसते अपने आप को मातृभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर कर देने की घड़ी है। बावरी बहनों, ऐसे धन्य और पुण्य क्षण सभी के भाग में नहीं होते। मौत की आंखों में आंखें डालकर कहो, हम तेरा आलिंगन करने के लिए तैयार हैं।
1: जी जी रानी साहब, हम तैयार हैं।

0: 18 जून 1858 का लाल सवेरा। जनरल स्मिथ की फौज ने राव साहब के मोर्चों पर निर्णायक हमला किया और मोर्चे बिखरने लगे। ग्वालियर के सिपाही अंग्रेजों के साथ जा मिले। धरती पर होड़ लेता हुआ शहीदों का बहता हुआ लहू। अब आमने सामने की लड़ाई थी। मारो काटो के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तलवार और लहू, आजादी की ललक प्राणों का मोल मांग रही थी।
1: रानी युद्ध के खुले मैदान में कूद पड़ी।
2: देखो उसको मारो। देखना संभल के।
1: उनके साथ थे उनके विश्वसनीय साथी रघुनाथ सिंह, मुंदर, गुल मोहम्मद और बालक दामोदर राव की रक्षा में जुटा रामचंद्र राव देशमुख।
0: अंग्रेज सैनिक लगातार रानी का पीछा कर रहे थे। अंग्रेज रानी के आसपास तक पहुंच गए।

0: बाबा, बाबा भाई साहब ने कहा था झुंकी देह को विदेशी छू भी ना पाए।
1: वही होगा गुल मोहम्मद, वही होगा। इस बाबा गंगा दास की कुटी किस दिन काम आएगी? जल्दी करो, रानी को कुटी में पधराओ और कुटिया को चिता बनाकर हम इस पार्थिव देह को अग्नि स्नान करा दें।
0: जी बाबा, ताकि ताकि चिता की आग भी पापी फिरंगी छू ना सके। हाँ। इसका इंतजाम भी करना होगा बाबा।
1: हाँ।
0: यहाँ पर एक बाजार बनानी होगी, तुरंत फरत बनानी होगी बाबा, तुरंत फरत।
2: हाँ कुल मोहब्बत, ये समाधि रानी साहिबा की यादगार होगी।

यादगार किसी दिवंगत स्वप्न या अस्तमान संकल्प की नहीं, बल्कि परंपरा का एक उज्ज्वल प्रस्थान बिंदु, जहां सुनाई देगा समय देवता का गुरु गंभीर स्तवन घोष। रास्ता यहीं ठहर नहीं जाता, यहां इति नहीं है मनुष्य की अजेय।

0: मुक्ति की अदम्य वांछा का प्रारंभ है ये इतिहास की अनवरतता, एक भव्य और प्रशस्त पथ।
1: पीढ़ियां इस राह पर चलेंगी, स्वनाम धन्य शहीदों का साया उनका मंगल आख्यान होगा, लघु से महत तक की अनंत यात्रा। यही है हमारी प्रतिबद्धता, हमारी विरासत और हमारा पाथेय। अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी।

संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी धारावाहिक का सातवां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआई एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये नवनियुक्त टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी स्तर से जुड़ाव का संगम है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भोपाल में मेट्रो की आज से नई समय सारणी लागू हो गई है। नए शेड्यूल में यात्रियों को सप्ताह के सभी दिनों में हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार से शनिवार तक मेट्रो प्रतिदिन 62 फेरे लगाएगी, जबकि रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में परिचालन समय 1 घंटा अधिक रहेगा और कुल 70 फेरे संचालित किए जाएंगे। त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सोमवार को भोपाल की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपित बनाया गया है और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका लाला। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे जुड़ा है आपकी पढ़ाई से, आपके हुनर से और आपके भविष्य से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की और जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन इसका लाभ ले सकता है और इसमें किस तरह का प्रशिक्षण मिलता है, और आज के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण PMKVY 4.0 में क्या नया है। और दोस्तों, साथ ही आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर और जानेंगे कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है और आप स्मार्ट स्टडी की मदद से कम समय में बेहतर परिणाम कैसे पा सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही हमारे युवा साथियों के लिए विशेष रोजगार सूचना होगी और आपको सुनवाएंगे कुछ मधुर गीत। तो दोस्तों, क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत की जाए इस प्यारे से गीत के साथ, फिल्म सुपर 30 से।

दोस्तों, PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पहलों में से एक है। इसका मूल विचार बहुत सरल है, युवाओं को ऐसे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स यानी उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल देना जिनकी वास्तविक दुनिया में ज़रूरत है, ताकि युवा पढ़ाई के साथ साथ एम्प्लॉयबल यानी रोजगार योग्य भी बने। दोस्तों, PMKVY की शुरुआत 15 जुलाई 2015 यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के अवसर पर हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था देश के युवाओं को ऐसे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स यानी उद्योग की ज़रूरत के अनुरूप कौशल प्रदान करना, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने, स्वरोजगार करने और अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए तैयार कर सकें। दोस्तों, 2015 के बाद PMKVY के कई चरण आए हैं, जैसे PMKVY 1.0, PMKVY 2.0, PMKVY 3.0 और अब PMKVY 4.0 यानी चौथा चरण। हर चरण के साथ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण को अधिक डिमांड ड्रिवन यानी मांग आधारित, इंडस्ट्री अलाइंड यानी उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप और आउटकम ओरिएंटेड यानी परिणाम केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार की जुलाई 2026 की समीक्षा के अनुसार PMKVY 1.0 ने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का आधार मजबूत किया। वहीं PMKVY 2.0 में कवरेज बढ़ी। PMKVY के तीसरे चरण में राज्य और जिला स्तर की प्लानिंग पर जोर आया और PMKVY 4.0 में ट्रेनिंग को नेशनल प्रायोरिटीज, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स, इंडस्ट्री डिमांड और स्किल गैप असेसमेंट से जोड़ने पर अधिक जोर दिया गया है। दोस्तों, PMKVY के पीछे एक महत्वपूर्ण विचार था भारत की बड़ी युवा आबादी को केवल एजुकेशन नहीं बल्कि एम्प्लॉयबल स्किल से भी जोड़ना। दोस्तों, हमारी बात जारी रहेगी और आगे हम जानेंगे कि PMKVY का लाभ कौन और कैसे ले सकता है, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में।

दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप युवा हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी मौजूदा स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आपके पास किसी काम का अनुभव है लेकिन उसका औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है, तो यह योजना आपके लिए उपयोगी हो सकती है। PMKVY 4.0 में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी अल्पकालिक प्रशिक्षण, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL यानी पूर्व अर्जित कौशल की मान्यता, और स्पेशल प्रोजेक्ट्स यानी विशेष परियोजनाएं प्रमुख ट्रेनिंग कंपोनेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के माध्यम से युवा किसी विशेष जॉब रोल के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, और जहां लागू हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी प्राप्त कर सकते हैं। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी काम को अनुभव, परंपरा या अपने स्तर पर सीखा है, जैसे सिलाई, वेल्डिंग, हस्तशिल्प या कोई तकनीकी काम, और अब अपने उस कौशल को औपचारिक रिकग्निशन यानी मान्यता दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें सीखा क्या जा सकता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अलग अलग सेक्टर्स यानी क्षेत्रों से जुड़े जॉब रोल्स उपलब्ध हैं। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT एनेबल्ड सर्विसेज यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं IT आधारित सेवाएं, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी पर्यटन एवं आतिथ्य, एरोस्पेस एंड एविएशन तथा कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। और PMKVY 4.0 की खास बात है फ्यूचर स्किल्स यानी भविष्य के कौशल पर बढ़ता जोर। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स यानी आंकड़ा विश्लेषण, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन तकनीक और ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी हरित तकनीक जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं, युवाओं को इन उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करना भी इस कौशल विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ सिर्फ सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा लाभ है एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार योग्यता बढ़ाना, अर्थात आपकी पढ़ाई के साथ साथ ऐसा प्रैक्टिकल स्किल जोड़ना जिसकी वास्तविक कामकाजी दुनिया में ज़रूरत हो। इससे युवा नौकरी के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपग्रेड यानी उन्नत कर सकते हैं, नए स्किल्स सीखकर रीस्किलिंग यानी पुनः कौशल विकास कर सकते हैं, और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार तथा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं हमारा अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ों में।

दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में समय विद्यार्थियों की एक सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आज विद्यार्थियों के पास पढ़ाई का सिलेबस काफी बड़ा है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, असाइनमेंट्स और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और इसके बीच सोशल मीडिया तथा मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस भी लगातार बनी रहती हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़िए, बल्कि सवाल ये है कि जितना समय हमारे पास है उसमें बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा जाए। और इसी से जुड़ी है हमारी आज की चर्चा, स्मार्ट स्टडी, कम समय में बेहतर परिणाम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का अर्थ कम पढ़ना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, यानी

सही प्लानिंग, सही टेक्निक और पूरे फोकस के साथ पढ़ना। सबसे पहला कदम है गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों, आपको पूरे सिलेबस को एक साथ देखकर घबराने की बजाय उससे छोटे और अचीवेबल यानी प्राप्त किए जा सकने वाले टारगेट्स में बांटना चाहिए। जैसे आज पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि बजाय आप सोचिए आज उसमें से एक डिमांड का टॉपिक समझना है और उससे जुड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। यह ज़्यादा स्पष्ट और अचीवेबल टारगेट है। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। अपने दिन में पढ़ाई के लिए आप निश्चित स्टडी ब्लॉक्स यानी अध्ययन अवधि तय कीजिए और हर ब्लॉक के लिए पहले से तय कीजिए कि उस समय आपको कौन सा टॉपिक पूरा करना है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, अननेसेसरी कॉल्स और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक यानी समयबद्ध अध्ययन पद्धति अपनाई जा सकती है। जैसे 25 से 50 मिनट तक फोकस्ड स्टडी और उसके बाद 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। यहाँ उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बैठना नहीं है, बल्कि उस समय में डीप फोकस यानी गहरी एकाग्रता बनाए रखना है। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय स्मरण। केवल किताब पढ़ते रहना या बार बार वही पैराग्राफ देखना पर्याप्त नहीं है। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किताब बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा, इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या था या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम बिना किताब देखे जानकारी को याद करने का प्रयास करते हैं तो लर्निंग अधिक एक्टिव हो जाती है। इसके साथ उपयोगी है स्पेस्ड रेपिटिशन यानी अंतराल आधारित पुनरावृत्ति, जिसमें किसी टॉपिक को एक ही दिन बार बार पढ़ने की बजाय आप उसे अलग अलग इंटरवल्स यानी अंतराल पर रिवाइज कीजिए। जैसे आज पढ़ा हुआ टॉपिक अगले दिन दोहराएं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा देखें और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर फिर रिवीजन करें। इससे इन्फॉर्मेशन को केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक स्मृति में रखने के बजाय लॉन्ग टर्म रिटेंशन यानी लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए स्मार्ट स्टडी का एक सिंपल रूल याद रखिए, रीड लेस रिपीटेडली, रिकॉल मोर फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार पढ़ने से ज़्यादा बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। स्मार्ट स्टडी में दोस्तों प्रैक्टिस यानी अभ्यास की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि विद्यार्थी लगातार कई घंटे बिना रुके पढ़ता रहे। ब्रेक भी स्टडी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है। लंबे समय तक लगातार पढ़ने से आपका कंसंट्रेशन कम हो सकता है, इसीलिए दोस्तों बीच बीच में उठना, थोड़ा चलना, पानी पीना और आँखों को आराम देना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी तरह नींद को भी पढ़ाई का दुश्मन नहीं बल्कि लर्निंग का एक हिस्सा समझिए। पर्याप्त नींद मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के समय पूरी रात जागकर पढ़ने के बजाय नियमित स्टडी शेड्यूल और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता देना अधिक प्रभावी रणनीति हो सकती है। इसी के साथ बैलेंस्ड फूड यानी संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि भी आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कार्य क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, कम समय में बेहतर परिणाम का अर्थ नहीं यह नहीं है कि मेहनत कम कर दीजिए, इसका अर्थ है बेकार समय कम किया जाए और प्रोडक्टिव टाइम यानी वास्तविक अध्ययन समय बढ़ाया जाए। 4 घंटे किताब के सामने बैठना और 4 घंटे पूरे कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना की पढ़ाई के घंटे गिनने के बजाय लर्निंग यानी वास्तविक सीखने को महत्व दिया जाए। अपने स्टडी रूटीन को अपनी क्षमता, अपने सब्जेक्ट और अपने लक्ष्य के अनुसार बनाइए। याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, इंटेंसिटी यानी केवल एक दिन की बहुत ज़्यादा मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण है। रोज थोड़ा लेकिन सही तरीके से किया गया अध्ययन लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये गीत विशाल मिश्रा की आवाज़ों में।

दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिला एवं सत्र न्यायालयों में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1174 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 17 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट के अप्लाई ऑनलाइन लिंक से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का युववाणी ज़रूर पसंद आया होगा और इन विषयों पर कुछ नई जानकारी भी ज़रूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे आपकी रेडियो साथी प्रियंका लाला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, योगदान भोपाल केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जीजी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाओ थी।
1: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जीजी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जीजी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूले हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मोहरा फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं विजू शाह।

इस गीत के बाद अब सुनिए आज़ाद फिल्म का गीत, अमित त्रिवेदी और मीनल जैन की आवाज़ें। अमिताभ भट्टाचार्य ने ये गीत लिखा है, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

बरसात फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

धूमधाम फिल्म का गीत सुनिए, वैशाली विशाल ददलानी की आवाज़ में। सिद्धांत कौशल ने गीत लिखा है और इसे संगीत दिया है क्लिंटन सरेजो और बैंका गोम्स ने।

कार्यक्रम के आखिर में अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनते हैं क्रिएचर 3D फिल्म का गीत। टोनी कक्कर ने गीत लिखा है और संगीतकार भी टोनी कक्कर।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 राजस्थान में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, ये हमारा संकल्प है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हो रहा है। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में आज भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। संत गुरु रविदास जी के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में आज PV सिंधु का सामना आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना स्पेन की पॉला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स से होगा। मौसम विभाग ने आज शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईटी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग
1: उमंग। सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
1: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
2: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
1: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
2: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
2: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
1: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
2: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
2: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
2: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
2: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
2: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
2: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोता, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
3: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: जी दादाजी।
5: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
6: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
4: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं। अद्भुत शांति।
5: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
4: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
6: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
9: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
4: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
9: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
4: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
9: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा

0: हाँ थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
1: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
0: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
1: दादी मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
0: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
1: मैंने कहा ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
0: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
1: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
3: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश अब कैसी तबीयत है?
1: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
3: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
0: जी।
3: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
0: जी जी अभी लाई। लो बेटा काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है।
0: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
3: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
1: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए, सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई।

0: अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
1: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
0: जी दादाजी।
3: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है, हाँ, और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
3: बेटा।
0: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
1: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
7: यस सर।
6: साहब इसको हंटर मारो।
7: साहब।
6: जी सर।
7: साहब
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
8: आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
8: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
8: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
6: Amen. तुम्हारा नाम क्या है?
7: जी मेरा नाम कोड़ा है।
6: ओके, तो तुम कोड़ा हो
7: जी।
6: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
7: जी ये मेरी जमीन है।
6: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
7: जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
6: पिछले साल भी तुमने यही बोला था, सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
7: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
6: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
9: जी सर,
6: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
9: जी सर।
6: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
9: जी सर।
6: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
9: जी सर।
7: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो, साहब साहब साहब ऐसा मत करो।
6: चलो हटो,
7: साहब साहब साहब साहब
6: आओ, ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: सिपाही।
9: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब।
9: जी सर।
7: साहब साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब।
8: इस तरह की घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
8: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
10: भाई कान्हू।
7: जी भैया।
10: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
7: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
10: क्या हुआ?
7: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
10: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
7: हाँ भैया।
10: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
7: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
10: तो फिर
7: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
10: हाँ ठीक कहा तुमने।
7: हाँ
10: ऐसा ही करेंगे।
7: जी भैया।
1: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
8: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू

0: भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानू मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कहनू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
2: अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीन
3: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
4: सही बोले, सही
3: कहे। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
1: हाँ सही कहा।
3: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
4: तो भैया सही बात
2: कह रहे हैं,
3: एकदम सही कह रहे हैं। हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती
2: है।
3: भाइयों भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
5: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
3: अब करो या मर जाओ,
5: अब करो या मर जाओ।
3: अबुआ राज अबुआ तिसुम,
5: अबुआ राज अबुआ तिसुम,
3: अबुआ राज।
1: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
0: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
1: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से ऊपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
0: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया।

0: बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
1: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: ये था NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए नादानिया फिल्म का गीत सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं सचिन जिगर।

AR रहमान की आवाज़ में सुनते हैं तेरे इश्क में फिल्म का गीत। इरशाद कामिल ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए समसामयिक विषय पर केंद्रित कार्यक्रम आजकल।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संगीत का इतिहास। आलेख अवनीश सोमकुंवर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संगीत का एक दिलचस्प इतिहास है। वंदे मातरम को संगीतबद्ध करना संगीतकारों के लिए गर्व की बात तो थी ही, लेकिन यह राष्ट्रधर्म का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य भी था। संस्कृत निष्ठ शब्दों की लयकारी करना और उसे सामूहिक गान के लिए उपयुक्त बनाना विलक्षण सांगीतिक प्रतिभा के सामर्थ्य की ही बात थी। इस गीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मनीषियों ने अपनी प्रतिभा के पुष्प अर्पित किए हैं। वंदे मातरम की पहली धुन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई और राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में स्वयं प्रस्तुत की। 1904 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में ही वंदे मातरम का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बाजार में आया। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तेज हो गया था। फ्रांस की रिकॉर्ड कंपनी पाथे ने इसे प्रकाशित किया और यह एक पेंटोग्राफ जैसा रिकॉर्ड था। 1901 ईस्वी में दक्षिण राजन सेन ने स्वयं का संगीतबद्ध वंदे मातरम गाया। इसको संगीतबद्ध करने में सबसे प्रमुख नाम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का है, जिन्होंने लाहौर से इसकी सार्वजनिक प्रस्तुति शुरू की और देशभक्तों के बीच विभिन्न स्थानों पर गाते रहे। उनके संगीतबद्ध किए हुए वंदे मातरम की विशेषता ये थी कि उन्होंने इसकी मूल प्रेरणा और शब्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संगीत दिया। वहीं एक अन्य संगीतकार दिलीप कुमार राय ने वंदे मातरम की नई संगीत रचना तैयार की और उसे महात्मा गांधी की उपस्थिति में 29 अगस्त 1927 को प्रस्तुत किया। उनके दो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी आवाज में जो वंदे मातरम गाया वह असम की लोकगीत शैली में है। दूसरा रिकॉर्ड कर्नाटक संगीतकार स्वर्गीय MS सुबुलक्ष्मी के साथ गाया गया था। यह संगीत रचना राग बिलावल और राग बागेश्री का समन्वय है। वंदे मातरम के संगीत से जुड़ा एक अन्य नाम मास्टर कृष्ण राव का है। उन्होंने अकेले ही इसकी प्रस्तुतियां देना शुरू की थीं और इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे। पूना में जन्मे मास्टर कृष्ण राव एक गायक अभिनेता थे। उन्होंने राग झिंझौटी में वंदे मातरम तैयार किया जो सार्वजनिक गायन के लिए उपयोगी था। पंडित पलुस्कर ने वंदे मातरम को राग काफी में प्रस्तुत किया। इसी राग में निबद्ध पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का गाया वंदे मातरम खूब सराहा गया। उन्होंने इसका संपूर्ण गीत गाया। बाद में जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह आकाशवाणी पर वंदे मातरम गाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया तो ओंकारनाथ ठाकुर ने सावधान की मुद्रा में पूरा वंदे मातरम गाया। 1935 से 1952 ईस्वी के बीच कई विख्यात संगीतकारों ने वंदे मातरम

0: कार्यक्रम को संगीत दिया। उनमें से प्रमुख मराठी रंगमंच के अभिनेता केशवराव भोले, विष्णुपंत फगड़ीस, वीडी अभ्यंकर, मास्टर कृष्णराव और दिलीप कुमार राय प्रमुख हैं। विष्णुपंत फगड़ीस ने वंदे मातरम को राग सारंग में प्रस्तुत किया। उस सभा में गोविंद वल्लभ पंत, पंडित पट्टा भी सीतारामैया, दादा धर्माधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद मोगूबाई कोडिकर ने राग मिश्र खंबावती में इसे गाया। बाद के समय में तिमिरबन भट्टाचार्य ने राग दुर्गा में वंदे मातरम की संगीत रचना की, जो ब्रिटिश बैंड पर भी बजाया गया। राग दुर्गा की धुन मार्च पास्ट में बजने वाले गीत की तरह है। राग दुर्गा की धुन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से प्रसारित करवाया, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जन जन को जोड़ने में वंदे मातरम की विशेष भूमिका थी। लोगों में देश प्रेम और आजादी पाने की अभिलाषा बढ़ाने वाली इस रचना का ही प्रभाव था, जब भारत के कोने कोने से अंग्रेजों को वापस अपने देश जाने के लिए आवाजें तेज होती गईं। इस गीत ने नागरिकों के स्वाभिमान को जगाकर संगठित रूप से राष्ट्र के सम्मान को कायम रखने के लिए जुनून पैदा किया। राष्ट्रगान की धुन के संबंध में यह महसूस किया गया है कि उसमें शब्दों से ज्यादा धुन का महत्व होता है। इस धुन को न केवल भारतीय संगीत की खूबी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, बल्कि कुछ हद तक पश्चिमी संगीत के लिए भी सुविधाजनक होना चाहिए, जिससे उसे ऑर्केस्ट्रा तथा बैंड पर विदेशों में भी आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक देने वाले गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान रहेगा और उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त होता रहेगा। संसद तथा विधानसभा में वंदे मातरम का गायन किया जाता है। शासकीय कार्यालयों में वंदे मातरम के गायन का उद्देश्य शासकीय कर्मियों में राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्र सेवा की भावना जगाना है। इससे अनुशासन भी आएगा और शासकीय कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुँचने की प्रेरणा भी मिलेगी। आजकल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी अन्य विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आजकल। विषय था वंदे मातरम के संगीत का इतिहास। आलेख अवनीश सोमकुमार का था और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।
2: नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की।

0: भोपाल में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर भर में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी राज्य स्तरीय समारोह के अलावा सीएम हाउस और बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
1: भोपाल में आज़ादी की वर्षगांठ का जश्न उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शहर की विधानसभा, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर के साथ सभी थानों और शासकीय निजी विद्यालय, महाविद्यालय, दफ्तरों, सार्वजनिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक दलों के कार्यालय आदि में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। भोपाल के लाल परेड मैदान में राष्ट्रीय पर्व का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति के उत्साह से गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और परेड में शामिल टुकड़ियों की सलामी ली। समारोह में पुलिस बैंड सहित 22 टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। परेड का नेतृत्व एसडीओपी सिहोरा जिला जबलपुर आदित्य सिंघारिया ने किया, जबकि नगर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली हेमंत कुमार निमाड़े ने सहायक परेड कमांडर की भूमिका निभाई। मार्च पास्ट में महाराष्ट्र पुलिस बल ने भी हिस्सा लिया। इस खास मौके पर पदक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा से जुड़े कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदकों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाल परेड मैदान से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वीर सेनानियों और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सपूतों को नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज देश स्वतंत्रता के इस मुकाम तक पहुँचा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की परेड में वंदे मातरम के गायन का शामिल होना हमारे लिए गर्व

और सौभाग्य का विषय है। जनगण मन और वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना एवं गौरवशाली विरासत के प्रतीक हैं। दोनों का एक साथ गायन हमारी समृद्ध राष्ट्रीय विरासत के पुनर्स्मरण

0: का निर्माण किया है, जिसके सात महत्वपूर्ण पिलर्स है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल कला संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है।
1: सरकार अगले 2.5 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और बड़े निवेश पर विशेष फोकस करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में हर वर्ष 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य स्तरीय समारोह के समापन के बाद लोकभवन में राष्ट्रीय पर्व पर स्वागत समारोह हुआ, जिसके बाद पर्व की संध्या पर रविंद्र भवन में आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति के जज्बों से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी गईं। आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
2: वहीं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1 सप्ताह तक संपूर्ण जिले में अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकालकर राष्ट्र प्रेम की अलग जगाई गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: धार जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्र प्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इन तिरंगा यात्राओं में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजनों के साथ सहभागिता की गई। धार एवं बदनौर में निकाली गई भव्य और प्रेरणादायक तिरंगा यात्रा में धार बहु सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर भी, धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों के साथ सम्मिलित हुई और हाथों में तिरंगा थामकर प्रमुख मार्गों पर मार्च किया। भव्य तिरंगा यात्रा में देशभक्तों द्वारा लहराते राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति के गीतों ने पूरे वातावरण को पूरी तरह से तिरंगामय बना दिया। वहीं संपूर्ण क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
4: स्वतंत्र दिवस की 15 अगस्त की मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को, देश प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहती हूँ। साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। हम एक संकल्प लें और एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, ताकि हमारा देश समृद्ध और हरा भरा रहे। हमको तिरंगा की शान है, हमारी हर घर तिरंगा लगाए, वो दुकान हो कहीं भी हो, और हमको तिरंगा लगाना चाहिए। वो सभी देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद।
3: वहीं स्वतंत्रता दिवस पर धार जिले में जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा ने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी साथ थे। संयुक्त परेड में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, महिला बल, विद्यालय एवं महाविद्यालय के NCC एवं स्काउट के छात्रों सहित विभिन्न विभागों के दलों ने उत्साहपूर्वक भाग ले आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कलेक्टर श्री मीणा द्वारा मीसा मंदी, लोकतंत्र सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का भी सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम दिए गए संदेश का सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
2: प्रकृति जब मुस्कुराती है तो वो अपने आंगन में जीवन के अनगिनत रंग और मधुर ध्वनियां बिखेर जाती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित पुआमा नगर वन, जहां प्रकृति और मानव के संरक्षण प्रयासों का एक शानदार संगम देखने को मिल रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता।
5: सुबह की पहली किरण के साथ जब पुआमा नगर वन का कोना कोना जाग रहा था, तभी पर्यावरण प्रेमियों की टीम ने जहाँ जीवन का एक अद्भुत उत्सव दर्ज किया। आपको जानकर है हर्ष होगा कि इस वन क्षेत्र में 38 विभिन्न प्रजातियों को अटखेलियां करते देखा गया, जिसमें राजसी, स्टेक्रेट हॉट ईगल से लेकर फफ थ्रोटेड वेबलर जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा रेड एबडावट और स्क्रेली ब्रेस्टेड मुनिया के

0: झुंड इस वन की हरियाली में नया संगीत घोल रहे हैं। इन पक्षियों की सक्रिय प्रजनन गतिविधियां इस जंगल के सुरक्षित और समृद्ध होने का जीवंत प्रमाण है। सबसे सुखद तस्वीर उस समय उभर कर आई जब नगर वन में हाल ही में विकसित किए गए नए तालाब का जल क्षेत्र जलीय पक्षियों के लिए एक शानदार प्राकृतिक आवास बन चुका है। तालाब में स्पॉटेड बिल्ड डक, लिटिल ग्रीव और कार्मोरेंट जैसे पक्षियों का डेरा डालना इस बात का सकारात्मक संकेत है कि जल संरक्षण के प्रयास अब जमीन पर जीवन बनकर लहला रहे हैं। वन विभाग के यह अथक प्रयास अब रंग ला रहा है। रेंज ऑफिसर नीरज बिसेन के अनुसार लेंटाना उन्मूलन और सघन वृक्षारोपण से इस क्षेत्र की जैव विविधता में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं छिंदवाड़ा के उप वन मंडलाधिकारी अनादि बोधालिया हर्ष व्यक्त करते हुए बताते हैं कि पुआमा नगर वन में जलीय पक्षियों की बढ़ती गतिविधियां हमारे हैबिटेट डेवलपमेंट का शानदार परिणाम है। विभाग का लक्ष्य इस वन को केवल एक जंगल नहीं बल्कि जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भविष्य में होने वाले नियमित पक्षी सर्वेक्षण यहाँ के वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत करेंगे। पुआमा का यह हरा भरा परिक्षेत्र हमें सिखाता है कि यदि हम प्रकृति की ओर संरक्षण का एक कदम बढ़ाएं तो वह जीवन के सैकड़ों उपहार हमारी झोली में डाल देती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
1: विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर बैतूल जिले में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, समय पर पहचान और जन जागरूकता को लेकर विशेष अभियान आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत बैतूल, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, भीमपुर, दामजीपुरा, चिचोली एवं आमला में सिकल सेल जाँच एवं जागरूकता शिविर लगाए गए। शिविरों में लोगों की सिकल सेल जाँच के साथ बीमारी के लक्षण, उपचार, नियमित फॉलोअप और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। युवाओं को विशेष रूप से विवाह से पहले वर वधु दोनों की सिकल सेल जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। जिला नोडल अधिकारी सिकल सेल कार्यक्रम डॉक्टर अंकिता सीते ने 7 जागरूक नागरिकों को सिकल मित्र के रूप में जोड़ा। सिकल मित्र अपने अपने क्षेत्र में सिकल सेल से संबंधित सही जानकारी को स्वास्थ्य संस्थाओं से आगे समुदाय और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सीते ने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। जब समाज का जागरूक व्यक्ति अपने गांव और समुदाय में सही जानकारी पहुंचाता है तभी यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी जांच आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। समय पर सिकल सेल की पहचान होने से मरीज को आवश्यक उपचार और नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अभियान के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि शादी से पहले सिकल सेल की जांच कराएं, सही जानकारी अपनाएं, झाड़ फूंक से बचें और समय पर शासकीय अस्पताल में निःशुल्क जाँच एवं उपचार कराएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से डॉक्टर मयंक भार्गव।
1: मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत भिंड जिले में 30 एमपी बटालियन एनसीसी और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से सीएटीसी कैंप में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक साधना चौधरी, 30 एमपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलवंत सिंह, मैं भारत आइकॉन राहुल राजपूत, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मीना धोरे, मैं भारत और कैंप में चंबल संभाग ग्वालियर के एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा उपस्थित कैडेट को मिशन पार्सल के तहत बाल अधिकार किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। मिशन सहकारी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जेंडर विविधीकरण और महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। साधना चौधरी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर की गतिविधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि कोई भी पीड़ित महिला अथवा पॉक्सो विक्टिम पुलिस अथवा स्वयं वन स्टॉप सेंटर्स में उपस्थित होकर संरक्षण प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर में अल्पकालीन संरक्षण प्रदान किया जाता है जहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विदेश परामर्श की संपूर्ण व्यवस्था रहती है और उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का पात्रता अनुसार प्रयास किया जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय

0: के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। आपकी फरमाइश का समय है 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में सुनिए ध्यानेश खान का सरोद वादन। राग है माझ समाज। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक रंग। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर सुनेंगे सूचनापरक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिए बेगम अख्तर की गाई चंद गजलें। 9:30 पर शब्द सागर में हम आपको सुनवाएंगे ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। इसके अलावा सुनेंगे चित्रा सिंह से उनका काव्य पाठ। जिले की चिट्ठी सुनिए 10 बजे। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे दिव्या शर्मा का ख्याल गायन, राग है तोड़ी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी धारावाहिक की 8वीं कड़ी। हमारे इंदौर केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। ये सभी प्रस्तुतियां इंदौर केंद्र की होंगी। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा योगदान भोपाल केंद्र का। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 6 बजे। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित होगा 8 बजे। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा में सुनवाएंगे महफिले समा। रागरजनी कार्यक्रम में कल रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिए दिव्या शर्मा के ख्याल गायन का। राग होगा मधुवंती।

कल शाम 7:30 पर भोपाल से किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर ज्योति जैन से की गई भेंटवार्ता, पशुओं में बाह्य परजीवी नियंत्रण। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: बहू जी मम्मी जी,
4: इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
5: तो लेन देन
4: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
5: ओ
4: जैसे UPI से।
5: अच्छा
4: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: आम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में उनके जीवन दर्शन और समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस आयुक्त की ओर से भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता की पहचान भी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भोपाल कमिश्नर ने राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का संदेश देते हुए हेलमेट पहनने के लिए भी प्रेरित किया।
1: ये पुलिस विभाग की तरफ से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, एक ये अंग है। हेलमेट सभी को पहनना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसका सबको पालन करना चाहिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्ययोजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट एवं क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्ययोजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगति

0: प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि निर्यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय उत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। ये सम्मान वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, दक्षता, कार्यकुशलता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान के बारा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने वीवीजी रामजी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जन से प्रस्तावित विकास कार्यों की घोषणा भी की। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,89,000 मकान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, ये हमारा संकल्प है।
2: हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। आज भले 2,89,000 घर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। राजस्थान के बहनों और भाइयों, हम लगातार तब तक मकान बनाएंगे जब तक हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री, वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष और आशीष उषा अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक तथा सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में श्रृंगार किया गया। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकाली जा रही है। नागपंचमी के मौके पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी के प्रसिद्ध नागद्वारी मेले में नागपंचमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बड़वानी जिले के नागलवाड़ी भीलट देव मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आगरमालवा के प्रसिद्ध प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिवालय बैजनाथ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं खंडवा के ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का ये दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में आज जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र के संयुक्त तत्वावधान में रेवा सेवा समागम नर्मदा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। छतरपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के लिए 20 अगस्त से खंड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यूपीएससी की सीएपीएफ 2025 परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए के लिए चयनित झाबुआ के राजवीर सिंह पवार को कलेक्टर और एसपी ने सम्मानित किया। शहडोल में नकली घी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष जांच अभियान के तहत एक दर्जन से अधिक दुकानों से देसी घी के सैंपल लिए गए। जबलपुर में नागपंचमी पर सपेरों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई की। तुलसी शोध संस्थान नयागांव चित्रकूट के सभागार में संस्कृति विभाग के द्वारा कल से 2 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले में आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई। अशोकनगर कलेक्टर द्वारा जिले में ईट राइट एक्टिविटी के अंतर्गत 7 खाद्य कारोबारकर्ताओं को हाइजीन रेटिंग के संबंध में प्रमाण पत्र आज वितरित किए गए और मंदसौर कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अगले 24 घंटों के दौरान रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साथ भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
6: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहन को वर्षा बहन की राम राम। भाइयों बहनों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। भैया अपन तो देख ही रहे हैं कि पिछले कछु दिनों से बारिश होवे से मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो गई है, इसे हमें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन भैया अपन तो देखते ही हैं कि जा मौसम में बारिश होवे से कीट पतंग मच्छर बहुत ही पनपत हैं। तो भैया हम तो आपसे यही कहें कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें और अपने खान पान को विशेष रूप से ध्यान रखें, और जहाँ तक हो दिन ढलवे से पहले ही खाना खा लें। कैसे रात में बहुत सारे कीट पतंग आ जाते हैं। और जब आपको विशेष ही ध्यान रखें भैया कि खाना हमेशा ढककर रखें, खाना और पानी, और अगर खुला हुआ रखा है तो उसको बिल्कुल भी ना खाएं। और यदि हम पानी को छान कर हल्का गुनगुना करके पिएं या पानी को छान कर उबाल कर ठंडा करके पिएं तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। कैसे भैया आपने तो जिद्दी हुई हुई है कि जिस समय में बहुत से लोगों को खांसी जुखाम संक्रमण जैसी समस्याएं हो जाते हैं, तो इन सब से बचवे के लाने बहुत ही आसान उपाय ये है कि हम पानी को हल्का गुनगुना पानी पिएं। भैया मुश्किल तो है जी गर्मी के मौसम में, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे गले को बहुत ही राहत मिलत है। और रात में ऐसे सर्दी खांसी ज़्यादा है तो रात में अगर हल्दी को गरम गरम दूध पियो जाए तो बासी भी जुखाम में बहुत आराम मिलत है। तो भैया आप स्वास्थ्य को ध्यान रखें, कैसे स्वास्थ्य है तो सब कछु है। और आज है नागपंचमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी यानी आज के दिन जे पर्व मनाओ जा रहा है। जे दिन नागों की पूजा करवे को विधान है। अब हिंदू धर्म में नागों को नाग देवता भी मानो गाओ है, और वासुकी नाग धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों को राजा बताओ गाओ है। तो भैया जे दिन सभी नाग देवता की पूजा करते हैं, परिवार की सुरक्षा, सर्प भय से मुक्ति और सुख शांति, और जाके संग संग काल सर्प दोष के निवारण की कामना भी करते हैं। और मान्यता है कि श्रावण शुक्ल पंचमी को आस्तिक मुनि ने राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ को रोककर नागवंश की रक्षा करी रहती, और तभी से नागों को आभार स्वरूप मान के जे पर्व मनाओ जाते हैं। जी वजह से आज हम नागपंचमी मनाते हैं। और भैया भगवान शिव के गले में अपन देखते हैं कि नाग एक आभूषण के रूप में सुशोभित रहे थे, तो जे सभी शिव भक्तन के लाने जे खास दिवस होते हैं। और अपन भी देखते हैं कि सावन में बारिश के दिनन में अक्सर अपन देखवे को अपन को मिलत है कि सांप अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, हमारे घर के आसपास हमें सांप देखवे को मिलत है। और हमारे पूर्वजों ने भी सांपों को नुकसान ना पहुंचावे और उन्हें प्रकृति को मित्र मानकर उनको सम्मान करवे के लिए जी परंपरा बनाई है। और जे दिन नागों की पूजा करवे से सर्पदंश को भय भी दूर होते है, और भगवान शिव को आशीर्वाद भी मिलत है, और प्रकृति के जीवों के प्रति अहिंसा का भाव भी जागृत होते है। तो सभी जीवों के प्रति अपन अहिंसा भाव रखें, जी वजह से आज जे नागपंचमी को पर्व अपन मनाते हैं। तो भाइयों बहनों जी बातों भी नागपंचमी की, और अब हम आपको सुनवाते हैं जे संदेश।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। भाइयों बहनों, आज है सोमवार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं ये गीत अर्चना जाटव की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है बस स्टैंड को 12 चौक छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, श्रीमती शीला भाभी, यशोदा भाभी, भगवती भाभी, ममता देवी, रामकली, अंश, मोहिनी, गोलू, नीरज, आरती।

भाइयों बहनों, अगर आप भी अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो हमको इस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। नंबर है 9425702768 पर। तो भैया बहनों, जल्दी करें और हमें लिखकर भेजें अपनी पसंद का कोई भी गीत। हम आपके पसंदीदा गीत को अपने कार्यक्रम में ज़रूर से शामिल करेंगे। और इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कृष्ण गोपाल दुबे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है अमलतास अमरीन होम्स कटारा भोपाल से, मध्य प्रदेश से योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेम भाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय और कृष्ण भारतीय ने। तो सुना थे जे लोकगीत।

भाइयों बहनों, अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के बारे में। हम आपको बता दें कि जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया है, ये दोनों ही भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं और जिन्हें देश में जो व्यापार रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में शुरू करा गया था। और जो स्टार्टअप इंडिया है, ये योजना को जो उद्देश्य है वो यही है कि जो अपने देश के युवा हैं, उनके जो जो नए और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं बिज़नेस को लेके, व्यापार को लेके, तो वो ऐसे लोग स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ऐसे लोगों को स्टार्टअप शुरू करवाने के लिए प्रेरित करो जाते हैं और देश में नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से ही जीव प्रोग्राम शुरू करो गए है। और जाको मुख्य उद्देश्य, मुख्य लाभ ये भी है कि इसमें शुरुआत के 3 साल तक इनकम टैक्स में छूट दी जाते है और सरकारी टेंडरों को प्राथमिकता दी जाती है और आसान नियम भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस में भारी छूट भी दी जाती है। जाके नियम बहुत ही आसानी बनाए गए हैं, यही वजह है कि सभी लोग आसानी से अपने व्यापार को शुरू कर सकें और अपने व्यापार को शुरू करने के लिए आगे आएं, पीछे ना हटें, झिझकें ना। तो ये जो नए आइडियाज़ हैं, नया बिजनेस है, उसको शुरू करने के लिए जो हमारे युवा हैं वो पीछे ना हटें, आगे बढ़ें, ऐसी करने के लिए उन्हें पूरी तरह से प्रेरित करो जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चाहते हैं तो आप इसके स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टैंडअप इंडिया के बारे में। तो ये योजना विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लाने हैं जो अपने जो कि अभी तक अपन देखते हैं कि बिजनेस में पीछे रह गए हैं, जैसे कि महिलाएँ हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, तो वो जो अपना नया व्यवसाय शुरू करवा चाहते हैं तो उनको बैंक से लोन दो जाते हैं। और स्टैंडअप इंडिया को मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, सीधे बैंक से लोन लेकर अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, अपना नव व्यापार शुरू कर सकते हैं। और जे नव व्यापार शुरू कर भी खिलाने उन्हें बैंक से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक को लोन दव जाते हैं। और भैया जे भी सुनिश्चित करो गए है कि देश की हर बैंक शाखा को कम से कम 1 अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी को, कम से कम 1 महिला को, 1 महिला उद्यमी को जे लोन दे वो जरूरी है ताकि उनको रोज़गार के अवसर मिल सकें। और जैसे ये व्यापार को भी हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस, ट्रेडिंग व्यापार या कृषि से जुड़े कोई भी बिजनेस व्यापार आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप स्टैंडअप मित्रा पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं और ये योजना को लाभ उठा सकते हैं।

साथ हैं। तो भैया हम तो आपसे यही कहें कि जो भी नव व्यवसाय शुरू करवाओ चाहते हैं, अपने नए आइडियाज़ लेके आवो चाहते हैं, तो ज़रूर से करें, झिझके नहीं। सरकार ने पूरी पूरी आपको सहायता देवे की सोची है ना। सरकार से पूरी पूरी तरीके से बैंक से ऋण भी मिलत है, छूट भी मिलत है और टैक्स में भी छूट मिल रही है। तो भैया हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो योजना को लाभ ज़रूर से उठाएं। और भाइयों बहनों, अपन सुन रहे हैं बुंदेली गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो इसी क्रम में हम आपको अगला गीत सुनवावे जा रहे हैं राम सेवक खरारे की आवाज़ में। और जे गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिता बाई भारतीय ने। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये लोकगीत।

भाइयों बहनों, अपन देखा था कि जब जैसे बारिश के समय में हमें अपनी सेहत को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खान पीन को, हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे समय में हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चन को ध्यान रखते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को अपने पशुओं को भी ध्यान रखना होता है। कैसे बरसात के दिनों में पशुओं को, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, तो इन सबन को भी विशेष ही देखभाल की ज़रूरत होती है। कैसे जे मौसम में नमी के कारण संक्रामक बीमारियां हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े और फंगस को खतरा भी बढ़ जाते हैं। और पशुओं को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए कई विशेष बातों को हमें चाहिए कि हम ध्यान रखें, ताकि पशु भी स्वस्थ रह सकें। जैसे कि जो पशुओं के रहने की जगह है यानी बाड़ा, वो हमेशा सूखा और साफ होना चाहिए। गीले और कीचड़ वाले फर्श से पशुओं की खुरों में सड़न और थन में संक्रमण होने को खतरा बनो रहे थे। तो जी बहुत ही ज़रूरी है कि जो उनका रहने का स्थान है वो सूखा और साफ हो। और जैसे बाड़े के आसपास हमें चाहिए कि हम पानी को इकट्ठा ना होने दें। गड्ढों को, अगर गड्ढे हैं भी, तो उनको मिट्टी से भर दें। और पशुशाला थोड़ी ऊंचाई पे होना चाहिए ताकि वहाँ पानी जमा ना हो पाए, ताकि पशु भी बीमारियों से बच सकें। और शेड में ताज़ी हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसमें नमी ना बढ़े। और अगर छत में कहीं भी लीकेज हो तो उसे बारिश से पहले ही अपन को चाहिए कि अपन उसे ठीक करवा लें। और फर्श को कीटाणु रहित करवे के लाने नियमित रूप से सूखे चूने को छिड़काव करत रहो चाहिए, ताकि हमारे पशु स्वस्थ रह सकें। और जी मौसम में जावात को भी ध्यान रखें, खान पान को भी ध्यान रखें। जैसे बारिश में केवल अत्यधिक हरा चारा ना खिलाएं, चारे में 60% हरा चारा और 40% सूखा चारा मिलाकर ही देवो चाहिए। कैसे केवल गीला व नया हरा चारा खावे से पशुओं को दस्त या अफरा, पेट फूलना, डायरी जैसी समस्याएं हो सकते हैं। तो इन सब से बचाव के लाने जी ज़रूरी है कि उनके खान पान को ध्यान रखा जाए। और चारे और दाने को नमी वाले स्थान से दूर रखो चाहिए। नमी के कारण दानों में फंगस पैदा हो जाते हैं, ताकि पशुओं के लिए जानलेवा टॉक्सिन बन सकते हैं। तो भैया जब आपको ध्यान रखें कि बारिश में एक साथ बहुत सारा दाना जमा ना करें। और जाके संग संग भी बात को ध्यान रखें कि पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए और खुरों को मजबूत रखने के लिए उनके आहार में 20 से 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज लवण, कैल्शियम और नमक ज़रूर से मिलावा चाहिए। और संग संग पशुओं को हमेशा गड्ढों या नालियों का दूषित पानी पीवे से रोकवा चाहिए। उन्हें केवल और केवल साफ़ और स्वच्छ ताज़ा पानी ही पीवे को देवो चाहिए। और जी मौसम में जैसे जू, चिचड़ी, डांसी, मक्खी और मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं, जो सर्रा जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं, तो भैया कि इन सब से उनको बचाव ज़रूर रखना चाहिए। और पशु चिकित्सा की सलाह पर परजीवी नाशक दवाइयों को उपयोग करके पशुओं को नहलाएं या स्प्रे करें। और बाड़े में मच्छरों को भगावे के लिए नीम की सूखी पत्ती को धुआं कर सकते हैं, या गोबर के कंडे को जलाकर बाकी धुनी भी कर सकते हैं, ताकि अपन पशुओं को बीमारी से बचा सकते हैं। तो भैया हम तो यही कहें, आप पशुओं को भी ध्यान रखें। और अब कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम ले रहे हैं कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी की आवाज़ में। हम आपको लोकगीत सुनवा भी जा रहे हैं और जी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है बस स्टैंड राम टोरिया से बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, महाराज चक्रवर्ती, हरी राम, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज, समस्त बुंदेलखंड। तो भाइयों बहनों, सुनते हैं जी लोकगीत।

भाई बहनों, अब तो अपन देख ही रहे हैं कि अब ये घड़ी को समय समाप्त हो रहा है, तो आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज को कार्यक्रम आपको पसंद आ हुई है। तो अब आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं। राम राम।

0: सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू
2: मुकुल जी। पिछले दो दशकों में ब्रिक्स एक आर्थिक संवाद मंच से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स की भूमिका में बदलाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कैसी संभावनाएं बनती हैं?
3: देखिए, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो रूस ने चाइना और भारत से ये कहा था कि हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर है या जो जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होता है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और वो हमारे ऊपर सैंक्शन डालते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन पड़ रहे थे, औरों के ऊपर नहीं पड़ रहे थे, उनको संभावना थी। तो वहाँ से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जब ये जो चीज़ एक छोटा सा ग्रुप तीन देशों का बना, उसमें फिर ये थिंकिंग हुई कि अन्य विकासशील जो देशों को भी जोड़ा जाए। तो उसमें ब्राज़ील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, और उसकी वजह से इसका आकार सिर्फ एशिया यूरोप तक नहीं सीमित रहने के बजाय एक वैश्विक इसका आकार बन गया। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 11 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो विकसित होते हुए देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सबको मिलाकर विश्व का आर्थिक संपत्ति है उसमें आधे से ज्यादा अब ब्रिक्स में आ गई है। तो एक इनके ऊपर एक भार भी है कि अन्य देशों को एक दिशा दें, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, और अब हम दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब उस बराबरी के मुकाबले को करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि एक विजन या एक थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अभी तक तो ये था कि ये ठीक नहीं है, अब पहली बार भारत ने एक दिशा ये दी है कि हमको किस बात पर जोर देना चाहिए, किन चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। 170 180 विकासशील देश हैं, तो वो इस बैठक का ये महत्व है। और ये एवोल्यूशन कहिए या ये जो बदलाव आया है वो इसलिए भी आया है कि विश्व में भी अब एक बदलाव आ चुका है। जहां पहले एक तरफ आर्थिक या सैनिक या पर्यावरण अलग अलग माने जाते थे, अब ये बात सामने आ रही है कि सब सम्मिलित हैं। अगर पर्यावरण को दृष्टिकोण को हम नहीं जोर देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इन दोनों को मिला के हमारी सैनिक शक्ति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक शक्ति भी हर देश के पर्यावरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनती है। अगर पर्यावरण में समस्या होगी, शहरों में समस्या होगी, या तो हमारा आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा, ये चीज सामने आ गई है
2: जी।
3: पहले ये कहा जाता था या जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं वो ये कहते थे कि हिमालय की नदियों में पानी कम होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम गिर रही है। अब ये सामने आंकड़ा आ रहा है कि हिमालय की नदियों में पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा था, पर यूरोप की नदियां सूखती जा रही हैं। ये चीज आज विश्व के सामने, यूरोप के सामने आ गई है कि उनकी नदियां सूखती जा रही हैं पर हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत ने अगर एक दिशा देता है कि अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, या जंगल ठीक से लगें, या हम वेस्ट कम करें, तो लोग सुनने को तैयार हैं
2: जी। मुकुल जी, भारत की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर विशेष तौर पर महत्व दिया जा रहा है, तो इसमें मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कही जाए, इस पर हम अभी से नहीं सदियों से जोर देते आए हैं।
3: देखिए, प्रधानमंत्री बहुत पहले ये बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमको ये नहीं देखना है कि हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस जिस पर जोर दे रहे थे, हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत फर्क है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जाना है। हमको देखना है कि जैसे जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, तो उसमें जो वेस्ट है या जो चीज हम बर्बाद करके फेंक देते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। ये आंकड़े सामने आए हैं कि वेस्ट में आधे से ज्यादा खाना फेंका जाता है
2: जी।
3: ये नहीं कि खराब हो जाता है क्योंकि सड़ जाता है, क्योंकि

0: अपमान ऊंचा है, जैसे हमारे यहाँ होता है कुछ खाना जो मंडियों में नहीं उपयोग में आता है, पर ये चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पे जो दुकानों से लोग खरीद के लाते हैं आधे से ज्यादा वो फेंक देते हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही थी कि देखो हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास, और इसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना है, पर अपनी लाइफस्टाइल जो हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं। इसी से फिर आगे चलता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। और अगर हमको कहा जा रहा है कि आप अपना विकास इस तरह से करिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर असर कम पड़े, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका असर हमारे जनजीवन में हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी कहा था 2018 में, सबसे पहले कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि हम बर्बादी ना करें, और हम जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम अपना विकास रोकें, हम एक दिशा दे रहे हैं कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। और भारत तो इस स्तर पर है कि जैसे चाइना का विकास अब विश्व में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहा है, और वो एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल है या तेल या कोयला जो है उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं उनकी तुलना में, पर भारत के जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं वो वर्ल्ड की एवरेज से भी कम है। तो भारत ये कह रहा है औरों से कि देखो ये संभव है कि एक नई दिशा में हम विकास कर सकते हैं अपना, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वही किया जाए जो विकसित देशों ने किया, और इसकी वजह से हमारे ऊपर आप दबाव मत डालिए, पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को लेके भारत ने इस बैठक में आगे बढ़ाया है लाइफस्टाइल करके कि भाई देखो अगर हमको कुछ करना है तो हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो देखें, और हम इस पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको हम फेंके नहीं, पर हम ये देखें कि उसका फिर इस्तेमाल कर सकते।
1: आपने लाइफस्टाइल की बात की है, तो हमारे यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ, इस अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विकास करने की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स देशों के बीच में लाइफ जैसी जो व्यवहार आधारित पर्यावरणीय मॉडल की बातें हैं उनको व्यापक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है और इसके लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता होगी।
0: देखिए इसमें सहयोग तो यह है कि भारत ये कह रहा है कि कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, हम आपस में ऐसा नियम करें या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए ऐसे सिद्धांत बनाएं कि हम वेस्ट ना करें। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि विकसित देश ये कहते थे कि हम लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएंगे जो सबको पालन करना पड़ेगा। भारत ये नहीं कह रहा है कि ऐसे नियम बने जिसका सबको पालन करना होगा। भारत ये कह रहा है क्योंकि हमारे सभी देशों में नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, तो इन शहरों का आकार कैसा हो, हम अपना दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयास करें कि हम वेस्ट ना करें। तो भारत ये नहीं कह रहा है कि इसको एक कानून के रूप में हमको अपनाना चाहिए, पर इसको हमको एक स्टैंडर्ड कहिए या हमको एक दैनिक जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकार भारत ने कहा है इसी के लिए नहीं अन्य चीजों में भी, कि कोई नियम नहीं बनना है, कोई रेगुलेशन या फोर्स नहीं होना है, हमको स्वतः ही करना है क्योंकि ये हमारे हित के लिए है, तो ये एक्सेप्ट होगा।
1: अभी आपने सतत जीवन शैली की बात कही है, तो ब्रिक्स की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में भी सतत जीवन शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आम नागरिकों की जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सके, जैसे कि आपने आर्थिक विकास की बात सबसे पहले कही थी।
0: देखिए अभी तक तो थिंकिंग ये थी कि जो विकसित देशों ने मॉडल अपनाया है या जिस प्रकार से उनका विकास हुआ है सबको वही तरीका अपनाना चाहिए हुआ है, ऐसे शहर बने उसी तरह से हम लोग एनर्जी उत्पादन करें, कहते हैं सोलर और विंड की तरफ जाइए। तो भारत का एक योगदान इस तरफ नहीं हो रहा है कि हमारा उत्पादन में हम क्या परिवर्तन करें जो चाइना ने किया है। भारत ये कह रहा है कि जो हमने नगरीकरण कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें हमको विकास परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने आगे कुछ विचार रखे हैं इस बैठक में कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, उससे बचाव करना है, मैंने कहा कि हमारे यहाँ नदियों में उतना कमी नहीं आ रही है जितना यूरोप में आ रही है, तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है जो उनकी प्राथमिकताएं हैं कि बर्फ कम गिरेगा, बारिश कम होगी, नदियों का पानी कम होगा, हमको ये देखना है, पेड़ लगाओ, हमको ये देखना है कि सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, पर हमको जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है जो उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है उसको हम कैसे ठीक करें, तो हम पेड़ से अपना दृष्टिकोण हटाकर जमीन की तरफ ले जाएं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन।

0: परिवर्तन है। हम ये ना देखें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ये देखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको देखें। तो एक नई दिशा ये दी जा रही है इस बैठक में कि समस्या तो वही है, उसका निदान क्या होगा उसमें हमको ये देखना है कि वो निदान ऐसा ना हो कि जो उनने हमसे कहा है जो उनके लिए फायदामंद हो सकता है या उनकी परिस्थितियों को देखता है, पर उसका निदान हमको ये देखना है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जा सकता है। और जितने भी ब्रिक्स देश हैं या अन्य विकासशील देश हैं, सब में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग देहात में अभी रहते हैं और रहते रहेंगे। तो इसलिए जो नई दिशा दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाइव से शुरू किया और आगे भी कहा जा रहा है कि जो हमने परिभाषा हमने अपनाई थी उनके कहने पर, उसको हमको एक नई दिशा देनी है, वो आगे बढ़ रही है।
1: मुकुल जी, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी केंद्र हो जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिशें की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आपको क्या लगता है कि कैसे ये परिणाम अपना देंगी और क्या आवश्यक है उनको प्राप्त करने के लिए?
0: देखिए, भारत का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कहा, अपना मिसाल दिया है कि जो ग्लोबल एमिशन का एवरेज लेवल है उससे भारत कहीं कम है और विकास हो रहा है भारत में। तो उसी धारा को लेकर इस ब्रिक्स कमिट में जो सूचना मिल रही है कि जो अधिकारी स्तर पर बैठक हुई है या हो रही है उसमें ये बात आई है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सिर्फ घोषणा तक न रखें पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, इसको हमको लागू करना है
1: जी।
0: तो वहाँ ये बात आ रही है कि मिसाल जो बात आई कि साहब ये जो जंगल में आग लगती है, तो ये बात आ रही है कि उस टेक्निकल नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए, उसको हम शेयर करें। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की बात की कि हम वेस्ट ना करें, तो ये आया कि कुछ उसके कुछ नियम बनने चाहिए, कानून नहीं बनने चाहिए पर कुछ नियम बनने चाहिए। और ये बात आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारे गांव में हर देश की सभ्यता में जो जिस तरह से ये रहते थे लोग, उसको भी हम एक आंकड़े में लाएं। तो एक तरफ से तो ये है कि नई दिशा है, दूसरी तरफ से ये है कि टेक्निकल लेवल पर, डेटा की लेवल पर भी चर्चा की जा रही है कि इसमें भी एक समानता आ जाए ताकि हम आपस में इसको शेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबको फायदा हो, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी एक नई दिशा आई है कि एक्सपीरियंस शेयर करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमको विकसित देशों से सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने पास ही इतने साधन है, इतना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और हमारे पास डेटा को एकत्रित करके हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नई बात आई है इस बैठक में।
1: मुकुल जी, जंगल की आग का जिक्र किया आपने, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो हमें नजर आता है कि भारत में भी जंगल की आग का सामना करना पड़ता है लोगों को और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जंगल की आग लगती है, कई सारे जंगल बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि एक जंगल खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है लेकिन राख होने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। ये जो स्थिति है इससे निपटने के लिए किस तरह की प्रणाली या फिर किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह से संस्थागत सहयोग किया जा सकता है या कैसे बदलाव लाया जा सकता है कि हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना भी ना करना पड़े और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हो।
0: देखिए, जंगल में आग तो हर जगह लगती है। ये देखा गया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तापमान की वजह से जंगल में भीषण आग लगी है। भारत में विशेषता यह है कि भारत अकेला देश है विश्व में जिसमें फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है
1: जी।
0: किसी भी देश में फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं माना गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनकी क्षमता, उनकी सोच अन्य देशों से फर्क है। तो इसलिए इस बैठक में जो बात आ रही है कि अर्ली वार्निंग पर जोर दिया जाए
1: जी,
0: कि हम क्या प्रयास करें, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ पहले से आइडिया हो जाए कि यहाँ आग आएगी, इस तरह से हवा के प्रकोप से बढ़ेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर भारत में अच्छा काम हुआ है सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत सोच के इस बात को रखा है क्योंकि भारत में ये क्षमता है, भारत और देशों को इसमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के साथ। तो मेरे ख्याल ख्याल से इसमें सफलता मिलेगी और ये फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान पर आएगा।
1: जी मुकुल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्यासा सावन फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में दिलीप ताहिर का लिखा गीत। फिल्म है मेहरबान, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

अगला गीत फिल्म गज़ब से है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में, कुर्बान फिल्म के लिए इस गीत को लिखा समीर ने और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
3: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई है। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
4: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, 13 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
2: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
5: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय

0: प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। द रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समा

0: स्थापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held.

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुँच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूंगा। जिनमें पहला है, इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा, इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है? आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए, कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज।
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा अच्छा हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे एफबीओ क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके उसमें हेल्थ क्लेम्स है न्यूट्रिशन क्लेम्स है कंडीशनल क्लेम्स है इक्विवेलेंस क्लेम्स है मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है एफबीओ को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम उस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कई भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से रमा शंकर वाजपेयी रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
3: जी नमस्कार
0: जी बताएं क्या सवाल है आपका
3: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है
0: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका
2: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रासूटिकल करके एक रेगुलेशन है फंक्शनल फूड्स फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज मेडिकल यूज करके उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए मतलब डिसीज को क्यूर करेगा डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं वेरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए डॉक्टर रेकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते वो डॉक्टर के रेकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके
0: जी बिल्कुल और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं
1: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी पिछले पांच वर्षों में इन्होंने इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं
0: बहुत बड़ी कार्रवाई
1: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
0: बैनर लगे होते थे
1: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाता थी तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल है दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है।

0: जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्ष की है।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? इसलिए इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस पर थोड़ा सा आप बता दें।
1: जी कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: जी बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
3: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है करके।
1: जी एफ एस एस आई का।
3: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एफबीओ, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें एफबीओ को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट करे करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे व्हाटएवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है, तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
0: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
0: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत

0: सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज्यादा एनआरआईज हैं। अब इसमें जो वीसी फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर मतलब एनआरआई जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो यूएसए, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे वीसी के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर है उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: हेलो, नमस्कार
1: जी। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी,
2: श्रीकांत जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी,
2: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके इसके समाधान का क्या मतलब तरीका क्या है मतलब?
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: हाँ जी, क्वेश्चन ये है मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही उनका सवाल है ना
1: जी।
3: हाँ जी, मतलब एनी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, एक साल और 6 मंथ्स, वो एफबीओ टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लेबल नहीं देखते जनरली, अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेज प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है कुछ टैम्पर, बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है
1: जी। अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
0: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी जी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी।
0: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 1915 है, ये टोल फ्री है
1: जी।
0: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है, व्हाट्सएप नंबर है 8800195880019915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और पिछले एक वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी। और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश हेमा सिंहपुर बेड़ा से, उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं।

0: उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है, सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है, अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हॉलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
2: इसमें बेसिकली तीन निशान है, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप जो एक BIS के ऐप में है उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
3: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSC पे हम क्या बोलते हैं कंप्लेंट करते हैं या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम
2: जी आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। राकेश जी आप कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, कंपनी में भी आप फोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहां कीजिए, वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है, उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं, और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा पोस्टकॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है, इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और पोस्टकॉफ पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं, अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप, हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम

0: फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है, और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैनुफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियां उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
0: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है, लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल, हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए। सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच
1: जी,
0: करना,
1: जी,
0: वो भी
1: समय समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण। पहली फरमाइश दिल्ली शहर मुरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की है। अगली फरमाइश है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश भेजी है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से फरमाइश करते हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार जतिन ललित।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत चुपके चुपके फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोलो और संगीतकार SD बर्मन। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है डोंगरगांव छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही और महराज जहां, स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से फरमाइश की है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर चुपके चुपके फिल्म का गीत।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश साहू, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है। आशा भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाज़ों में नमक हलाल फिल्म के गीत की। अनजान ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

नेपाल पैलेस सागर से फरमाइश करते हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रोबिन। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, रऊफ और शहीद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गोला बाजार बक्सर से गीत सुनना चाहते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी ने फरमाइश की है दिल मांगे मोर फिल्म के गीत की। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर की शब्द रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत।

और यह है आज के कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत। मेरा नाम जोकर फिल्म का नाम है। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है। शैली शैलेंद्र ने एक गीत लिखा है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। गीत को सुनने की फरमाइश की है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ यादव मोहल्ला सनावद से फरमाइश करते हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। अगली फरमाइश राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से है। एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

और इसी के साथ आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए ध्यानेश खान का सरोद वादन, राग है माझ समाज, क्षमा कीजिए माझ खमाज राग है, और तबले पर संगत की है इस्माइल दद्दू खान ने।

0: अभी आपने सरोद वादन सुना, राग था माज खमाज। कलाकार थे ध्यानेश खान, तबले पर संगत की थी इस्माइल दद्दू खान ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2,50,000 लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।

शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।